0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।
1: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

देखो गुरु नानक सच्चे पातशाह गुरु नानक घर की बाणी है। नानक मन समझाइए, अपने मन नु समझाओ। गुरु के शब्द सलाह और गुरु के शब्द पढ़िया करो, गुरु की शब्द गल करिया करो, गुरु का नाम जपया करो। बस नानक मन समझाइए, अपने मन नु समझाइए। की समझाइए? गुरु का शब्द

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac।

0: www.vasudhaiva.in.
1: The world is here.
2: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। जनाब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की बातें मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो दिल में दबाकर मत रखिएगा, फटाफट एक छोटा सा कॉल कर मुझे बता सकते हैं अपने हालचाल, शहर के हालचाल, पड़ोसियों के हालचाल। नंबर है वही जाना पहचाना सुना सुनाया जो अक्सर बारंबार हम आपको बताते रहते हैं। चलिए एक बार पुनः बता देता हूं, 01204060205 अर्थात हिंदी में 120 40 60 205 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं और मेल के माध्यम से मेल जोल बढ़ा सकते हैं। ये तो रही संपर्क सूत्र की बात, यानी कि इसके जरिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्या है खास इसके बारे में, मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर देता हूं। जाहिर सी बात है कि कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आपके पास कुछ हुनर है, उस हुनर को आप आगे लेकर जाना चाहते हैं और अच्छे दोस्त हैं, अच्छे टीचर हैं, तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। ऐसी खास एक टैलेंट मेरे साथ जुड़ने जा रहा है जो कि शारदा यूनिवर्सिटी का है, उसके बारे में बातें करेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। भाई ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको इशारा किया था कि आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कौन है, कहाँ से है, चलिए ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराना चाहूंगा, लेकिन बारम्बार मैं आपसे यही बातें शेयर कर रहा होता हूँ, साझा कर रहा होता हूँ कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं, आपके पास एक अच्छी कला है, आपके पास एक अच्छा टैलेंट है, वो चाहे आप सिंगिंग की बात हो, चाहे वो राइटिंग की बात क्यों ना हो, तो ऐसी हमारे रेडियो को सुनकर, हमारी ख्याति को सुनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शारदा यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम है सुमित कुमार। ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और GNM का कोर्स कर रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी, अच्छा गाते, अच्छे इंसान है। तो चलिए ज्यादा इंतजार नहीं कराते तो बात करते हैं सुमित की। तो सुमित फाइनली सुनो शारदा 90.8 FM में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
0: कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है
1: सर? आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, नया एक्सपीरियंस है सर।
0: सेम मुझे भी अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके, क्योंकि ये आपके साथ मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है।
1: जी।
0: तो सुमित सबसे पहले आप मुझे बताएं कि शारदा यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में, ये तो रही बात रेडियो FM की, चूंकि आप उस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, और शारदा यूनिवर्सिटी में आना कैसे हुआ, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में कुछ बताइए, अपने कोर्स के बारे में बताइए जिसका मैं नाम देख रहा हूँ GNM कोर्स आप कर रहे हैं, सो प्लीज बताइए।
1: सर सबसे पहले शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ। ये तो सर एक अलग ही यूनिवर्सिटी है, मतलब इतने बड़े लेवल पर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बच्चों को आने का अलग ही क्रेज रहता है। और मेरा जो कोर्स है GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, मैं यहाँ से नर्सिंग कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। तो यहाँ की जो फैकल्टी मेम्बर है बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फ्रेंडली नेचर है बिल्कुल, और बहुत सपोर्टिव हैं। जैसे कि मेरी फैकल्टी मैम ने कोई सजेस्ट किया था यहाँ पे आने के लिए।
0: ओह ग्रेट।
1: तो
0: उनका नाम बताइए।
1: सर मेरी मैम वो माधवी शर्मा मैम है।
0: ओह ग्रेट।
1: यस सर, वो हमें MSN पढ़ाती हैं, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पे जाओ शारदा में। और सर शारदा एक मतलब बच्चों के लिए बहुत सपोर्टिव है, एक प्लेटफॉर्म खुद देता है कि बच्चे आगे निकले यहाँ से जाने के लिए।
0: तो आपको कैसा लग रहा है उन्होंने यहाँ सजेस्ट किया, आपको यहाँ एक मौका मिल गया, हम और आप बात कर पा रहे हैं?
1: सर एक ग्रेट फीलिंग है सर, मेरे लिए बहुत ज्यादा ग्रेट फीलिंग है सर।
0: ये हमारे लिए भी बहुत एक बड़ा कहते ना कि एक सुखद लम्हा है, इस लम्हे को हम कैद करना चाहते हैं। और जो आपकी बातें वो अपने जो लिसनर्स हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उन तक हम बातें पहुंचाएंगे जरूर। सुमित यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, अगर आपके अंदाज में, क्योंकि आप सिंगिंग करते हैं, आपके बारे में, उस टैलेंट के बारे में जानेंगे जरूर, कोई अगर ब्रेक पर जाना चाहे आपके अंदाज में, तो कोई कैसे ब्रेक पर जाएगा?
1: सर ऐसा ब्रेक के लिए सर मैं ब्रेक के लिए बना ही नहीं हूँ।
0: अच्छा, ब्रेक के लिए बना ही नहीं है, मतलब लगातार काम करना चाहते हैं,
1: अभी रुकना ही नहीं चाहते, अभी तो सर स्टार्ट ही नहीं किया अच्छे से।
0: चलिए खैर मैं उस ब्रेक की बात नहीं कर रहा था, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेना चाहते हैं जो कि म्यूजिकल ब्रेक है। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ यहीं जुड़े रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे साथ हैं शारदा यूनिवर्सिटी का एक टैलेंट है जो कि बहुत अच्छे सिंगर है, सुमित कुमार उभरते हुए कलाकार हैं, राइजिंग स्टार इनको हम कह सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ और प्रोग्राम का नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। खास बात यह कि आज एक शारदा यूनिवर्सिटी का टैलेंट हमारे बीच में है और यही हमारा उद्देश्य है कि शारदा यूनिवर्सिटी का रेडियो स्टेशन आपके लिए है, हम आपके लिए हैं। और अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कुछ दिखाना चाहते हैं जमाने को, तो जरूर यहाँ आ पाइए और आपकी बात हम आपके श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। तो सुमित, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी आपके कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में, आपके टीचर के बारे में जिन्होंने आपको यहाँ प्रमोट किया कि सुमित आप अच्छा गाते हैं, शारदा यूनिवर्सिटी का अपना एक रेडियो एफएम है, वहां जाकर आपके लिए। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं और आपके जो टैलेंट है उसको हम हमारे लिसनर्स तक हम पहुंचाएंगे। थोड़ा कुछ और बताइए अपने बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि डिटेल में मुझे बताइए कि जो शौक है, इसके शौक की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, किसने आपको गाइड किया?
1: जी सर, तो सर जब मैं स्कूल टाइम में था, 12th क्लास की बातें हैं, तो एक रफ्तार है हमारे जो रैपर हैं, उनका रियल नेम है दिलेन नायर, तो सर मैं उनको सुनता था। तो वहीं से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आया कि हाँ मैं भी ट्राई कर सकता हूँ इस फील्ड में। तो मैंने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले जो मैंने लिखा था वो सर रैप नहीं था, वो एक सॉन्ग था, एक मेन बात जो ये है। तो वहां से मैंने लिखना स्टार्ट किया, वहां से देख के। तो मैंने जब वो एक सॉन्ग कंप्लीट किया तो वहां से मुझे मोटिवेशन आया कि अब मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कुछ। तो सर मैं रफ्तार को जैसे सुनता था, जो मेरे मोटिवेशन में बहुत ज्यादा हेल्प की उन्होंने, तो वहां से मैंने सोचा क्यों ना अब ये जो मैंने सॉन्ग लिखा है ऐसा ही कोई रैप में कन्वर्ट करके देखूं। तो सर वहां से जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले एक उसके बाद रैप बना के देखा, तो जो उन्हीं का था जो रफ्तार ने निकाला था एक बैक बेंचर करके, तो सर उन्हीं का हमने उठाया था वहां से, उनके गाने की 4 लाइन लेके सर मैंने पूरा रैप, एक सबसे पहला जो मेरा रैप था वो मैंने अपना बनाया था। और सबसे सर पहला जो मैंने YouTube पे अपना डाला था वो वही था मेरा भी, जो गाने का नाम था बैक बेंचर।
0: तो रिस्पांस कैसा मिला
1: सर उस गाने पे? अभी तक का सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया है, 32K+ व्यूज जा चुके हैं सर।
0: सर
1: उस गाने पे।
0: जब आप गाना लिखते हैं तो किस सोच के साथ आप गाने को लिखते हैं और फिर आप उसको किसके पास लेकर जाते हैं कि भाई या सर प्लीज आप मुझे गाइड करिए कि मेरा गाना सही लिखा गया है, या किसको इसको और कैसे मैं बेहतर बना सकता हूँ?
1: सर मेरे गाने बेसिकली जो अभी तक मैंने किए हैं और मैं कर रहा हूँ ये स्टोरी बेस्ड होते हैं। जैसे बैक बेंचर में मैंने स्कूल लाइफ बताई है, एक दूसरा सॉन्ग मेरा आया था झूठा इश्क, वो मैंने उसमें लव लाइफ बताई थी अपनी कि लव लाइफ कैसे होती है क्या। अब जैसे सर एक है मेरा, उसके बाद मैंने जो निकाला है मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास मेरे सॉन्ग का नाम है, तो सर उसमें मैंने एक स्टोरी बताई है कि मिडिल क्लास इंसान की कैसे
0: कहानी है, स्ट्रगल उसका,
1: जी जी कैसा स्ट्रगल है, तो वो एक है मेरा। तो मतलब मेरे जो थोड़े रैप है वो कहानी पे बेस्ड है, बाकी अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हिप हॉप टाइप भी मैं जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है तो वैसे वैसे मैं उसको बढ़ाता जा रहा हूँ अपने उसको टैलेंट को। तो आगे भी सर ऐसा है कि अभी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स रेडी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छा कर रहे हैं क्योंकि अभी तो एक छोटी सी शुरुआत है।
1: जी जी,
0: मंजिल बहुत दूर है, बहुत करीब जरूर आएगी जब आप छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे हो, तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। यहाँ पर सुमित एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं हमारे लिसनर्स को, एक छोटा सा ब्रेक और उस पर एक गाना आपके लिए, सो कहीं जाएगा बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हंसते मुस्कुराते इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई टैलेंट है जिसको आप जमाने के बीच लेकर जाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 01204060205 अर्थात हिंदी में। ये मैंने आपको बता दिया 120 40 60 205, एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति कर मैंने आपको ये बात बता दी कि इसके माध्यम से आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल शारदा यूनिवर्सिटी का एक राइजिंग स्टार है जो कि हमारे बीच है, सुमित कुमार है, जो कि एक अच्छे रैपर है, बहुत अच्छा लिखते हैं, और इसके टैलेंट को इनकी फैमिली ने पहचाना, खुद इन्होंने पहचाना, इनकी टीचर ने पहचाना और इनके दोस्तों ने भी इनके टैलेंट को पहचाना। यही वजह है कि शारदा यूनिवर्सिटी में ये कि शारदा एफएम में ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए, और मुझे लगा कि जब ऐसे अच्छे दोस्त हैं तो क्यों ना हम उनको ये दिखाएं कि रेडियो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बातें होती हैं। तो सुमित, दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहोगे?
1: सर, दोस्तों के बारे में सर ऐसा है कि मेरे कुछ लिमिटेड ही दोस्त हैं, मैं ज्यादा दोस्ती नहीं रखता हूं। और सर जो जितने भी हैं वो सर इतने अच्छे हैं कि बहुत सपोर्टिव हैं मेरे को लेके, मेरे मतलब वो ना सिर्फ इसमें म्यूजिकल में, मेरे को एज अ फ्रेंड वो अपने करियर में भी, जैसे मैं यहाँ पे नर्सिंग कर रहा हूँ तो वो उस फील्ड में भी मेरे को हेल्प करते हैं। तो वो ऑल ओवर वो जो मेरे फ्रेंड हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते रहते हैं मेरे को हर टाइम टू टाइम, पढ़ाई में भी लेके और गाने में भी लेके। और
0: वेरी गुड। लाइफ क्या नाम है दोनों दोस्तों के?
1: सर एक मोलश्री है सर, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो वहाँ पे साथ में अभी आई है हमारे।
0: जी जी जी।
1: और सर एक प्रथम है।
0: प्रथम है।
1: हाँ जी।
0: चलिए, इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं कहूंगा कि ये याराना आपका बना रहे, दोस्ती आपकी बनी रहे। तो सुमित, अब आते हैं कम टू द पॉइंट, यानी कि उसी मुद्दे पर आते हैं जिसके बारे में हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपके इस टैलेंट के बारे में जाना कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपने लिखना शुरू किया, कौन आपके आइडियल हैं जिनको आप मानते हैं। अब बात आती है फैमिली की, फैमिली का यहाँ मैंने जिक्र किया, फैमिली में किसने आपको सपोर्ट किया?
1: सर सपोर्ट सबसे पहले जो मेरे को फैमिली ने किया वो मेरी सिस्टर थी और ब्रदर थे।
0: क्योंकि वो आपसे बड़े हैं छोटे हैं?
1: हाँ सर, वो सबसे बड़े हैं, मतलब मैं सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में, सबसे बड़ी मेरी सिस्टर है और उसके बाद मेरे ब्रदर, उसके बाद मैं।
0: तो वो क्या करते हैं दोनों?
1: सर मेरी जो सिस्टर है वो नर्सिंग ऑफिसर है, तो वहीं से उन्होंने मेरे को यहाँ पे नर्सिंग में डाल दिया।
0: ग्रेट, नाइस।
1: तो उसके बाद सर मेरे जो ब्रदर है वो बैंक में मैनेजर है।
0: उन्होंने बैंक में नहीं डाला?
1: नहीं, उन्होंने बैंक में नहीं डाला।
0: ओके, तो उन्होंने आपके टैलेंट को पहचाना, उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आप अच्छा करो, लिखो, आगे बढ़ो।
1: यस सर।
0: अच्छा, मम्मी पापा की अगर मैं बात जानूं तो उनकी तरफ से कैसा रिस्पांस रहा?
1: सर स्टार्टिंग में तो मम्मी को मतलब इतनी नॉलेज है नहीं इस चीज के बारे में, तब मम्मी को जब मैंने दिखाया अपना गाना डाला तो मम्मी को खूब पसंद आया, तो मम्मी ने सपोर्ट किया। तो थोड़ा पापा है पीछे, मतलब डायरेक्टली तो सपोर्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली वो करते हैं।
0: हाँ भाई, पापा चाहते हैं कि कुछ बन जाओ,
1: जी बन जाए
0: और अच्छी तरीके से अपने करियर को स्थापित कर लो, खूब रुपया पैसा कमाओ।
1: जी सर।
0: लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इस फील्ड में रुपया पैसा नहीं है, खूब इज्जत है, खूब सम्मान है जब आप स्थापित हो जाते हैं।
1: जी सर।
0: तो सुमित, यहाँ पर मैं एक ब्रेक जरूर लूंगा, लेकिन ब्रेक से पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप जिम जाते हैं, आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, तो ये शौक इसको और उसको कैसे बराबर मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़ते हैं?
1: सर जैसे ये करियर ऐसा है, फील्ड ऐसी है कि इसमें सर पर्सनैलिटी भी काम आती है एज अ मॉडल। जैसे हमें शूटिंग करनी होती है, शूट करना होता है, तो अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करने के लिए तो सर मैं जिम, काफी साल का एक्सपीरियंस हो गया मेरे को, 5-6 साल हो गए हैं
0: तब से जिम कर रहे हैं।
1: जी जी, जिम कर रहा हूँ मैं, तो काफी ट्रांसफॉर्मेशन भी की मैंने इस चीज को लेकर फील्ड के अकॉर्डिंग।
0: अच्छा, नाइस। अच्छा, खान पान का बड़ा मैटर रखा जाता है, योग का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, अनुशासित होना भी बहुत जरूरी है,
1: डिसिप्लिन, डाइट।
0: हाँ, तो उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि लोग तो अब बहुत आलसी हो गए हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते और उल्टा सीधा खा रहे होते हैं, नींद वो पूरी ले रहे होते हैं, मतलब आलसी भी हो गए थे, नींद लेना बहुत जरूरी है। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो लोग हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं?
1: सर आज की डेट में तो सर हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं, एज़ मैं जैसे नर्सिंग ऑफिसर हैं, हमें हॉस्पिटल में जो ड्यूटी लगती है तो लोग को बहुत देखने को मिलता है, जैसे जंक फूड बहुत खाते हैं उन्हें, तो एब्डोमिन इन्फेक्शन काफी ज्यादा होने लगता है। तो आज की डेट में सर डाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है, और सर मेरे लिए थोड़ा हार्ड वर्क हो जाता है क्योंकि सर क्लिनिकल्स में ड्यूटी वगैरह होती है, फिर उसके बाद सर असाइनमेंट्स होते हैं, उसके बाद सर जिम, और उसके बाद सर डाइट, और एक सर हॉस्टल का खाना, सर सबको पता है हॉस्टल लाइफ।
0: तो आप यहाँ रह रहे हैं?
1: जी, हॉस्टल में रह रहा हूँ सर मैं। तो हॉस्टल में सर थोड़ी डाइट,
0: मैं एक बात कहना चाहूंगा यार, ये अक्सर बात मुझे सुनने को समझने को मिलती है, हॉस्टल का खाना देखो यार इतना बुरा नहीं होता, बिकॉज क्योंकि हर एक सिस्टम है, जैसे सपोज करिए कि हॉस्टल के जो देख रेख के केयर टेकर जिन्हें आप कहें, वार्डन जिनको आप कहें, वार्डन के ऊपर भी एक कमेटी होती है, उनके ऊपर एक कमेटी होती है, और कहा जाता है कि अन्य के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि खाना ऑब्वियसली बहुत अच्छा मिल रहा होता है, लेकिन हाँ मैं ये समझ सकता हूँ कि माँ का प्यार अलग है,
1: घर वाला स्वाद नहीं है,
0: वो सीन अलग हो सकता है। तो लेकिन दोस्त सुमित का कहना यही है कि अच्छा खाइए, अच्छा अपनी सेहत का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सेहत में चार चांद लगते चले जाएंगे। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात मेंशन की कि जंक फूड जिसको हम कहते हैं कि फास्ट फूड जो कि बहुत जल्दी तैयार होता है, बहुत जल्दी आपकी सेहत को वो नुकसान भी पहुंचा रहा होता है। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा, यहीं कहीं जाएगा मैं, सुनते रहिए, मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुमित कुमार जो कि शारदा यूनिवर्सिटी का नर्सिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, GNM का कोर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये गाना गाते हैं, बहुत अच्छे रैपर हैं, और इनके गाने के बारे में जरूर हम जानेंगे। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए और छोटे छोटे कदमों से आप निश्चित तौर पर आप अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। जी हाँ, एक ऐसा ही उदाहरण मेरे सामने जुड़ा हुआ है। सुमित कुमार हैं, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी के नर्सिंग डिपार्टमेंट से आते हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं। और इनकी जो शुरुआत रही, घर में एक नर्सिंग ऑफिसर भी हैं जो कि इनकी सिस्टर हैं, उन्होंने इनको प्रेरित किया। और वाकई शारदा विश्वविद्यालय में आकर कहते ना कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर। जब आप एक यहाँ आएंगे, एक बार विजिट करेंगे, तो सुमित हम अपनी टैगलाइन बनाकर रेडियो पर प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं कि जब आप एक बार यहाँ आएंगे तो आप यहीं कर होके रह जाएंगे, क्योंकि तो यहाँ का माहौल, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की पढ़ाई, प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें। तो सुमित, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कोई एक प्रोफेशनल नेम है या प्रोफेशनल कोई एक यूट्यूब है जिस पर आपकी वीडियोस होती हैं, लोग आपसे जुड़ सकें, आपसे बात कर सकें?
1: जी सर, मैं बताता हूँ। मेरा जो प्रोफेशनल नेम है, लेविन सुमित है। लेविन सर जो इंद्र जी के वेपन है, इंद्र जी का जो वेपन है उसको कहा जाता है लेविन, जिसका हिंदी में नाम है वज्र। हिंदी में वज्र कहते हैं,
0: वज्र।
1: हाँ, इसका मीनिंग थंडर स्टॉर्म, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बिजली निकलती है उनके में।
0: अच्छा,
1: तो लेविन का मतलब यही है।
0: ओके,
1: तो ये नाम मैंने ऐसा रखा कि लेविन सुमित मैंने इसलिए रखा क्योंकि कुछ रैपर है कि वो अपना नाम, जो रियल नेम होता है, हाइड करके वो कुछ दूसरा नाम रखते कि उनसे लोग पहचाने जो। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा नाम प्यार से रखा हुआ है, उसके साथ मैं आइडेंटिटी के साथ वो अपनी दूसरे नाम, जो प्रोफेशनल नेम है, आगे लेके जाना चाहता है।
0: मैंने भी सोचा, मैं भी जब एक्टर बन जाऊंगा तो मैं भी अपने नाम के साथ चलूंगा।
1: जी सर,
0: ये बात आपने बहुत अच्छी कही, मैं भी इसी बात पर यकीन करता हूँ कि मेरा नाम गगन गौतम है। फर्स्ट नेम भी बहुत अच्छा है और सेकंड नेम भी मेरा माशाल्लाह बहुत प्यारा है, गौतम ऋषि के नाम पर हम गौतम है। इस तरीके से मुझे लगता है कि अपनी एक पहचान को बरकरार रखना, उसके साथ आगे चलना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। सुमित, अगर फाइनली मैं आपसे कोई एक बहुत ही खूबसूरत गाना या यू कहें कि रैप सुनना चाहूँ, तो कौन सा आप हमारे लिसनर्स को रैप सुनाना चाहेंगे?
1: सर, मैं चार लाइन सुनाना चाहूंगा।
0: नहीं, तुम आठ सुनाओ बाबा, टाइम तुम्हारा है, बोलो।
1: अच्छा, ओके सर
0: जी।
1: सर, मैं अभी जो मैंने नया रिसेंटली सॉन्ग निकाला है, बम भोले, तो भोले बाबा पे मैंने कुछ सॉन्ग बनाया, तो वो उसकी लाइनें बताना चाहूंगा। भोले का रंग चढ़ा भंग, रगड़ भंग पिया मस्त जिया, भोले का फैन हूँ मैं, शिव का कैर हूँ मैं, विशिला जैर हूँ मैं, छोटा पत्थर तू पूरा कैलाश हूँ मैं, भोले तलाश में आ घूमू मैं तो तेरी चारों धाम में, मिलाना तेरे जैसा कोई मुझे सारे संसार में, दुश्मन का पे भोले सारे तेरे नाम से, काम बने मेरे सारे तेरे नाम से, बम बोले बोले तो बम बोले।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बोल, बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा एक आपने ताना बाना बुना है। तो भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी है, बनी रहे, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाइनली कुछ अगर आप कहना चाहते हैं कि उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में आ रहे हैं, अपने करियर को आगे लेकर जाना चाहते हैं, एक अच्छे रैपर बनना चाहते हैं, क्या संदेश होगा?
1: सर, सबसे पहली बात है कि खुद के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए ये चीज करने की, क्योंकि सर कुछ सोसाइटी है कि वो इस चीज में थोड़ा, सर जब स्टार्टिंग होती है, हम जैसे छोटे जैसे आर्टिस्ट हैं, उनकी जब स्टार्टिंग होती है तो सर सोसाइटी थोड़ा बहुत रोक टोक करती है कि इस चीज में कुछ नहीं रखा। तो सर खुद से ना, सर सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है इस चीज में। तो सर किसी की ना सुन के अपने दिल की करे, अपने मन की करे, जो टैलेंट है सर उसको आगे लेके जाए और कोशिश करते रहे सर, एक दिन अपने सपने पूरे जरूर होते हैं।
0: बेशक बेशक, जरूर सपने पूरे होते हैं, लेकिन उन सपनों के सामने सच बात तो ये भी कि दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, और इसलिए कहा जाता है कि हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा, यानी कि ईश्वर, खुदा, माँ बाप की ब्लेसिंग्स काम आती चली जाती है, और निश्चित तौर पर फिर वो एक दिन आपका आता है जब आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं, अपने सपने को साकार कर लेते हैं। तो सुमित, मुझसे बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा?
1: सर, मेरे को बात करके सर आपसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। सर, ये आपसे एक मैं चीज सीखा हूँ यहाँ पे के, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करूं मैं सर।
0: थैंक यू। नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी,
0: कुछ बातें होंगी तो जरूर मैं फिर आपके साथ साझा करूंगा। सो लिसनर्स, ये प्रोग्राम, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? 01204060205 अर्थात 12040602 पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर बता सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, वक्त का इशारा जब होता है तो मुझे लेनी होती है अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लिए ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.8 FM। टाटा बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: इन समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। जिंदगी म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय रुहान मलिक, लिरिक्स बाय साकिब नबी, ओनली ऑन सुरशादा 90.8 FM। जिंदगी।

0: मच्छरों पे कैसे करना है वार, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नवजात शिशु, लड़की हो या लड़का, उसकी एक समान देखभाल करें।
1: नवजात लड़की या लड़के में खतरे के लक्षण दिखते ही उसे बिना समय गवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या SNCU में ले जाएं।
0: एक वर्ष तक के सभी नवजात शिशु को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो सरकारी अस्पताल में उपचार, दवाएं, सभी जांचें तथा जरूरत पड़ने पर रक्त, ये सभी सेवाएं निःशुल्क दी जाती हैं।
1: और 102 एम्बुलेंस सेवा घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर तक निःशुल्क पहुंचाएगी।
0: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
0: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और TB एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को TB होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को TB होता है तो TB का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। TB के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी TB से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूँ कि हर HIV मरीज तुरंत TB की जाँच कराएं और सभी TB मरीज भी HIV की जाँच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क

0: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
1: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
0: क्या है राज?
1: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहे।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800 11 66 66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है।
0: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
0: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
0: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जिसका नाम है सेहत सही तो लाभ कई। इसी के अंतर्गत बहुत सारी बातें होती हैं अलग अलग विषय के साथ, हर रोज हम आपके साथ जुड़ जाते हैं। दोस्तों, सेहत है तो यकीन मानिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। आपके पास बहुत सारा रुपया है लेकिन आपका स्वास्थ्य आपके साथ नहीं है तो आप सोचिए कि वो रुपया किस काम का। इसलिए अगर आप सबसे बड़े धनी बनना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। दोस्तों, मैं हूं गगन आपके साथ, आपका मेजबान। और पिछले कार्यक्रम में हमने टीबी के इलाज के बारे में विस्तार से बात की थी। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है। सरकार मुफ्त दवाइयां देती हैं और यहां तक कि दवा प्रतिरोधी यानी MDR-TB का भी इलाज उपलब्ध है। लेकिन आज हम उस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे।

0: की बातें करेंगे, क्योंकि सच कहें तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने की नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने की होती है। बहुत सारे मरीज इलाज शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलोअप जांच नहीं करवाते, कहीं बाहर काम पर चले जाते हैं, या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं। और यही छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इलाज को बीच में न रोकने की, दवाओं के संभावित रिएक्शन की, अगर दवाओं से परेशानी हो तो क्या करना चाहिए, निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद कैसे करती हैं, और परिवार तथा समुदाय का सहयोग कितना जरूरी है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी स्वास्थ्य साथी टीकन देवी जी। स्वागत है टीकन भाभी, यानी कि लोग इनको टीकन भाभी कहते हैं और सम्मान के रूप में टीकन देवी कहते हैं, तो दोनों में कॉमन टीकन तो है। तो टीकन देवी भाभी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजे जी, सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आरजे जी, पिछले कार्यक्रम के बाद मुझे कुछ लोगों ने फोन किए, अधिकांश लोगों ने एक ही बात कही, हमें पता है कि टीबी का इलाज होता है, लेकिन इतने महीने तक दवाई लगातार लेना आसान नहीं होता। और सच कहूँ, यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इलाज पूरा करना उससे भी ज्यादा जरूरी।
0: बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनाएं जो इस विषय को समझने में मदद करे, तो श्रोताओं को बात और अच्छी तरह से समझ में आएगी।
1: बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहूंगी जो कुछ साल पहले की है। पास के एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक बच्चा था जिसका नाम रवि था। रवि को लगातार बुखार रहता, वजन कम हो रहा था, खांसी भी लंबे समय से बनी हुई थी। जांच हुई तो पता चला टीबी है। परिवार घबरा गया, लेकिन डॉक्टरों ने समझाया कि चिंता की बात नहीं है। इलाज शुरू हो गया। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालत सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख लौटने लगी, घर वालों को लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन 1.5 महीने बाद एक नई समस्या शुरू हुई। उसके शरीर पर लाल चकते निकलने लगे, उसे उल्टियां महसूस होने लगी, और तो और उसे उल्टियां आने भी लगी। माता पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी, दवा बंद कर दो, दवा के नुकसान हो रहे हैं। लेकिन संयोग से उस समय उसके पिता ने हमारे इसी कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई का पूरा एपिसोड सुना था, जिसमें कहा गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को बताना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से दवा को बंद नहीं करना है। उन्होंने वही किया। अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल ले गए, डॉक्टरों ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यक बदलाव किए और कुछ अलग जांच भी किए। कुछ दिनों बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई। आज रवि पूरी तरह से स्वस्थ है। सोचिए ना राजे बाबू, अगर उसके माता पिता डर कर दवा बंद कर देते तो बीमारी दोबारा गंभीर रूप ले लेती। यानी समस्या दवा में नहीं है, बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होने वाली प्रॉब्लम यहाँ बड़ी दिखाई पड़ती है।
0: बिल्कुल सही कहा दोस्तों। इस कहानी का सार यही है कि समय पर दवा जरूर लीजिए, लापरवाही मत बरतिए, और खुद पर और खुदा पर, यानी कि ईश्वर पर, परमात्मा पर विश्वास रखिए कि एक दिन आप जरूर स्वस्थ होंगे। तो ये कहानी सचमुच बहुत बड़ी सीख देती है दोस्तों, यानी दवा के दौरान कोई परेशानी हो जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुरंत स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क करना है। लेकिन भाभी, सबसे पहले यही बताइए कि इलाज की निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
1: देखिए आरजी जी, टीबी का जीवाणु बहुत चालाक होता है। जब मरीज दवा शुरू करता है तो कुछ ही हफ्तों में खांसी कम होने लगती है, बुखार कम होने लगता है, शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। और यहीं पर कई लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन वास्तव में उस समय शरीर के अंदर मौजूद सभी जीवाणु समाप्त नहीं हुए होते हैं। लक्षण कम जरूर हो जाते हैं, बीमारी का पूरी तरीके से खात्मा नहीं होता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों अलग अलग बातें हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम बार बार कहता है, डॉक्टर जितने समय तक दवा लेने को कहें उतने समय तक नियमित रूप से दवा लेनी जरूरी है। ये याद रखिए, आराम महसूस होना इलाज की सफलता का संकेत हो सकता है, लेकिन इलाज पूरा होने का प्रमाण बिल्कुल नहीं।
0: भाई बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, लेकिन व्यवहार में अक्सर देखा गया कि लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों?
1: कारण कई हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब वे ठीक हो चुके हैं, कुछ लोग रोज दवा लेने से ऊब जाते हैं, कुछ लोगों को काम पर जाना होता है तो फॉलो अप नहीं हो पाता, कुछ लोग दूसरे राज्य और दूसरे शहर में काम करने चले जाते हैं तो भी दवा के हल्के दुष्प्रभावों से वो डर भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग समाज के डर और शर्म की वजह से भी इलाज को छुपाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार इन चुनौतियों को समझते हुए कई व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई हैं, जिसमें मरीज को बीच में जो उसका इलाज चल रहा है वो बिल्कुल भी ना टूटे और उसे पूरी तरह टीबी से निजात मिले।
0: यही तो मैं पूछना चाहता था कि अगर कोई मरीज इलाज के दौरान गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है तब क्या होगा? क्या उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: हाँ।
1: ये बात खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत जरूरी है, जहां लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे जिले राज्य जाते हैं। आरजे जी, सरकार ने ट्रांसफर आउट की एक व्यवस्था बनाई है। अगर मरीज अपने स्वास्थ्य कर्मी या टीबी टीम को जानकारी देता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड निक्षय प्रणाली पर अपडेट हो जाता है और नए स्थान पर भी वही इलाज जारी रखा जा सकता है। यानी केवल स्थान बदलने के कारण दवा बंद करने की जरूरत नहीं है। जहां जाएं वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़े और इलाज जारी रखिए।
0: बिल्कुल सही कहा कि जहां जाएं वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़िए और इलाज जारी रखिए। आपने निश्चय का नाम लिया, बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में सुना होगा लेकिन विस्तार से शायद नहीं जानते होंगे। मैं आपसे समझना चाहता हूँ निश्चय के बारे में।
1: निश्चय वास्तव में टीवी मरीजों के लिए सबसे जरूरी व्यवस्था है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड, इलाज की प्रगति, फॉलो अप, सहायता और निगरानी की जाती है। इसके जरिए डॉक्टर ये देख सकता है कि मरीज की जो इलाज का अपडेशन है वो कहां तक पहुंचा है। अगर किसी मरीज को फॉलो अप जांच अभी बाकी है तो उसे याद दिलाया जा सकता है। अगर मरीज कहीं चला गया है तो उसका इलाज नए स्थान के साथ उसे जोड़ा जा सकता है। व्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की सहायता भी सुनिश्चित की गई है। यानी निक्षय केवल एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं है बल्कि इलाज की निरंतरता बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण साधन है।
0: तो दोस्तों अब बात करते हैं दवाओं से होने वाली प्रतिक्रियाओं की, यानी साइड इफेक्ट्स या रिएक्शन, क्योंकि यही वो विषय है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं।
1: और डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। आरजे जी, जैसे ही किसी को पता चलता है कि टीबी की दवाएं कई महीनों तक चलेंगी तो उनके मन में एक चिंता रहती है, कहीं दवा से कोई परेशानी तो नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि अधिकांश टीबी मरीज बिना किसी गंभीर समस्या के अपना पूरा इलाज सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कुछ दुष्प्रभाव या प्रतिक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान रिएक्शंस महसूस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, किसी को शुरुआत में मतली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, किसी का पेट भारी लग सकता है या जलन महसूस हो सकती है, कुछ लोगों को भूख थोड़ी कम लग सकती है। कई बार त्वचा पर खुजली या लाल चकते भी दिखाई दे सकते हैं। कुछ मरीज कमजोरी, थकान या चक्कर की बात आने की भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुनपना महसूस होना, सुनने की क्षमता में बदलाव आना या व्यवहार और मानसिक स्थिति में कोई असामान्य परिवर्तन महसूस होना। ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी, दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं है कि इलाज असफल हो रहा है, ना कि इसका मतलब ये है कि मरीज अपने मन से दवा लेना बंद कर दे। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यही होती है। कई बार लोग किसी पड़ोसी, रिश्तेदार, अधूरी जानकारी के आधार पर दवा छोड़ देते हैं, जबकि यह कदम सही नहीं है। उन्हें तुरंत स्वास्थ्यकर्मी, आशा बहन, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को इसकी जानकारी देनी चाहिए। याद रखिए, इन सभी रिएक्शंस का इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर जांच करेंगे, सलाह देंगे और जरूरी हुआ तो इलाज में उचित बदलाव भी करेंगे। लेकिन अगर मरीज बिना बताए दवा बंद कर देता है तो बीमारी फिर से सक्रिय हो जाएगी और इलाज मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेरा ये संदेश है, दुष्प्रभाव छिपाए मत, घबराए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल लेना बंद मत करिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफल इलाज की कुंजी है।
0: देखिए साहब, टीकन देवी ने अर्थात हमारी टीकन भाभी ने बहुत डिटेल में विस्तार से बता दिया। आखिर के शब्दों को, आखिर की लाइनों को फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, दुष्प्रभाव छिपाइए मत, घबराइए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल मत रोकिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफल इलाज की कुंजी है। यानी दवा से परेशानी हो तो पहला कदम दवा छोड़ना नहीं बल्कि डॉक्टर से बात करना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि हर शिकायत गंभीर नहीं होती। कुछ दुष्प्रभाव अस्थाई होते हैं, कुछ का इलाज किया जा सकता है, कुछ मामलों में डॉक्टर दवा की समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन यह निर्णय केवल डॉक्टर को ही लेना चाहिए, मरीजों को नहीं। याद रखिए, जल्दी जानकारी देना इलाज बचाता है, जबकि चुप रहना इलाज को खतरे में डाल सकता है।
0: बिल्कुल सही बात। इस बात को यूं ले सकते हैं कि अगर आपने डॉक्टर को सही समय पर बता दिया तो इलाज से आप बच सकते हैं, और जबकि आप चुप रह गए तो इलाज को खतरे में डाल सकते हैं। फॉलोअप जांचों की भी बात होती है टीकन देवी। कई लोग सोचते हैं कि दवा मिल गई तो अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: यही तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इलाज केवल दवा खाने का नाम नहीं है। नियमित उसकी जांच, उसकी निगरानी होना बेहद जरूरी है। डॉक्टर जब फॉलोअप जांच के लिए बुलाएं तो जरूर जाएं। अगर बलगम का नमूना मांगे तो जरूर देना चाहिए। अगर कोई जांच लिखी जाए तो उसे जरूर कराना चाहिए। जांचों से पता चलता है कि दवा कैसा काम कर रही है और कैसा नहीं। कहीं अतिरिक्त सहायता की जरूरत तो नहीं है? यदि कोई समस्या है तो उसे टाइम से पकड़ा जा सकता है।
0: बिल्कुल भाभी, आपने पिछली बार MDR TB का जिक्र किया था, उसके संदर्भ में इलाज की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी खास है, इसके बारे में भी बताइए भाई।
1: बिल्कुल, MDR TB यानी दवा प्रतिरोधी TB में यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामले में इलाज अपेक्षाकृत जटिल हो जाता है। दवाएं अधिक हो जाती हैं, निगरानी ज्यादा की जाती है और फॉलोअप भी अधिक होता है। लेकिन श्रोताओं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि MDR TB का मतलब इलाज असंभव नहीं है। आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी, नए उपचार की टेक्नोलॉजी के कारण मरीजों के ठीक होने की जो संभावना है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। 2014 से लेकर 2024 तक पहुंचने में जो टीबी की वजह से आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी और कई उपचार टेक्नोलॉजी के कारण मरीजों को ठीक होने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। बस शर्त एक ही है कि इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए।
0: और परिवार की भूमिका, कई बार मरीज अकेला पड़ जाता है, ये सब क्या है?
1: परिवार की भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार भी मानती है कि टीबी का इलाज केवल मरीज नहीं करता, पूरा परिवार करता है। घर का कोई भी फैमिली मेंबर उसे दवाओं के बारे में याद दिला सकता है, फॉलोअप के साथ उसके साथ जा सकता है, लक्षणों पर नजर रखता है, मानसिक सहारा देता है और सबसे जरूरी बात, मरीज को यह महसूस कराता है कि वो अकेला नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा असर एक सहारा देने वाला शब्द होता है।
0: और पोषण, इसके बारे में भी जानना या बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि रिकवरी में भोजन की बड़ी भूमिका होती है, इसके बारे में बताइए प्लीज।
1: बिल्कुल, दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन शरीर को ताकत भोजन देता है। इसीलिए सरकार निक्षय पोषण योजना जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से ये सहायता उपलब्ध कराती है। मरीज को नियमित भोजन लेना बेहद जरूरी है, जिसके अंदर दालें, अंडे, दूध, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां और पौष्टिक चीजें लेनी चाहिए, जो कि शरीर को रिकवरी में मदद करते हैं।
0: वाकई आपने बहुत अच्छी बात बताई, यानी कि खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, लापरवाही नहीं बरतिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि आज की चर्चा को कुछ मुख्य संदेशों में समेटना हो तो आप क्या कहेंगे, यानी कि वो सार क्या होगा?
1: बिल्कुल, मैं ये सार 8 बातों को याद दिलाने से करूंगी। पहली, टीबी की दवा अपने मन से बंद ना करें। दूसरी, बेहतर महसूस होने पर इलाज पूरा हो गया ये उसका संकेत नहीं है। तीसरा, दवा में कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। चौथा, फॉलोअप और जांच इलाज का सबसे जरूरी पार्ट है। पांचवा, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो स्वास्थ्य टीम को बताकर इलाज अपडेट कराएं। छठा, निक्षय और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इलाज की निरंतरता में मदद करती है। सातवीं, परिवार और उपचार सहयोगी मरीज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आठवीं, MDR टीबी भी इलाज योग्य है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से कार्यक्रम से जुड़ा रहे।
0: बहुत सुंदर बात आपने कही टीका देवी, और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, अगर रवि के माता पिता उस दिन डरकर दवा बंद कर देते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समझ, यही जागरूकता और यही सतर्कता हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए। साथियों, याद रखिए, टीबी का इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि धैर्य, नियमितता, परिवार के सहयोग और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रहने से सफल होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर लेते हैं सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ गई,
0: दवा चले नियमित हर दिन,
1: तभी मिटेगा टीबी का चिन्ह।
0: परेशानी हो तो बात बताएं,
1: अपने मन से दवा ना छुड़ाएं।
0: क्या बात है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सच बात तो ये है कि सेहत सही तो लाभ कई। ये विशेष कार्यक्रम स्मार्ट के सहयोग से हमने सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से आप तक पहुंचाया। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये विशेष कार्यक्रम बहुत बहुत बहुत पसंद आया होगा। निश्चित तौर पर इस जानकारी से आप लाभ उठाएंगे, अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाएंगे और 120 जो कि हमारे शहर का STD कोड है आपको लगाना ना भूलेगा। नंबर जब आप डायल करें 120 40 60 205, इसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। वक्त का इशारा, हम होते हैं 9:11। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मुझे गगन को दीजिए अनुमति और मेरे साथ जुड़ी रही टीकन देवी के रूप में खुशबू जी। तो खुशबू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया RJ बाबू।
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: आप सुन रहे सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक मुहिम चला रहे हैं, स्वास्थ्य जन जागरूकता की मुहिम है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और इसी मुहिम के अंतर्गत आज हमारे साथ में हैं शिल्पा अरोड़ा जी, आप सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं और आज हम आपसे जानेंगे टीबी के बारे में। तो इसके क्या कुछ लक्षण हैं और क्या कारण है?
1: टीबी के लक्षण हैं, लगातार अगर दो हफ्ते से आपको खांसी आ रही है, खांसी के साथ बलगम आ रहा है और बलगम में खून भी आ सकता है, लगातार बुखार होना, खांसी का होना, वजन का कम होना, भूख ना लगना, रात में पसीना आ जाना, ये सब टीबी के लक्षण होते हैं।
0: तो ये तो हो गए लक्षण। अगर इस तरह के लक्षण किसी को भी महसूस होते हैं या दिखाई देते हैं, परिवार में रहते हैं या कहीं अन्य जगह रहते हैं, तो सबसे पहले क्या उनको स्टेप लेना चाहिए?
1: सबसे पहले आके उनको बिस्रक के सरकारी अस्पताल में बलगम की जांच करानी चाहिए। बलगम की जांच से पता चल जाएगा कि आपको कौन सी वाली टीबी है।
0: तो अगर हम बिस्रक की बात करें तो यहाँ पर जो टीबी जांच की कौन कौन सी सुविधा है, कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है?
1: यहाँ पे ट्रूनेट हो जाती है, बलगम की सारी टेस्टिंग जितने भी तरीके के है सब हो जाते हैं।
0: अब बात करते हैं कि मान लीजिए टेस्ट में पुष्टि हो जाती है, हम फेफड़ों की टीबी की खासकर बात कर रहे हैं, तो क्या फिर उसका उपचार होता है, कैसे शुरुआत होती है?
1: उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे ही पता लगता है कि इस पेशेंट को पल्मोनरी टीबी है, जैसे कि फैलने वाली टीबी जिसको हम बोलते हैं, तो सबसे पहले तो पेशेंट को मास्क लगाना चाहिए। जैसे ही आपको पता लगता है कि वे आपको टीबी है तो मास्क का यूज़ करें। दूसरा, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, 168 डेज उनका ट्रीटमेंट चलता है, हर दो दो महीने बाद उनकी टेस्टिंग होती है कि टीबी कितनी ठीक हो रही है। उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी मेडिसिंस दी जाती हैं बचाव के लिए, जिससे कि ये टीबी उनमें ना फैले। 6 साल से छोटे बच्चों की अलग मेडिसिंस चलती है, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों की अलग मेडिसिन चलती है, 14 से जितने एडल्ट्स हैं उनकी अलग मेडिसिन चलती है, जितने भी उस पेशेंट के साथ मेंबर रहते हैं सबको बचाव की दवाई दी जाती है।
0: और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को लगता है कि अब तो मैं ठीक हूँ, एक महीना दवा खाई उसने और फिर बीच में उसने छोड़ दी दवा, तो क्या उसका ज़्यादा नुकसान हो सकता है?
1: हाँ, बहुत नुकसान हो जाता है। अगर पेशेंट बीच में दवाई छोड़ देता है, प्रॉपरली नहीं लेता, तो नेक्स्ट टाइम जब उसको टीबी होती है वो बिगड़ा हुआ रूप लेके आती है, जिसको हम बिगड़ी हुई टीबी का नाम लें, उसको MDR टीबी हम लोग बोलते हैं, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनको भी टीबी हुई है, अगर आप उसको समय से आप इलाज लेंगे, प्रॉपर इलाज पूरा कोर्स करेंगे, तो आप ठीक हो जाएंगे और आपको बिगड़ी हुई टीबी नहीं होगी। परिवार को तो अगर आपको बचाना है तो मास्क लगा के रखें, दूसरा अच्छे से कपड़े पहने, ठंड नहीं लगनी चाहिए ज़्यादा, गर्म पानी का यूज़ करें, हेल्दी डाइट लें, हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं।
0: चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि जिनको टीबी है वो तो है ही गई, लेकिन बहुत बार हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, जो व्यक्ति को टीबी नहीं है पता नहीं, वहाँ पर कोई हो सकता है कि और टीबी का व्यक्ति हो, तो ऐसे में अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है?
1: मास्क लगा के आप मास्क का यूज़ करें अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जा रहे हैं, और सबसे पहली बात अपना स्टैमिना अच्छा रखें, खाली पेट ना ज़्यादा रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, अपना हेल्दी डाइट लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
2: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। आप इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
6: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
7: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना कहलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
8: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
7: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
8: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
7: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं और तुम बच्चों
9: और गर्भवती महिलाओं को
7: हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
8: ये बात है तो हम बच्चे भी मच्छरों से भिशुम भिशुम लड़ने के लिए तैयार है।
7: क्या कहा तुमने?
8: Kids want to know, Miss मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
7: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
8: मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: दो, बन जाओ टीम तारा, जहाँ भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
1: टीम तारा है भैया।
2: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
0: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
1: गुड बाय।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नाम तो सुना ही होगा।
2: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन, सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन

0: एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने, उनसे बात की एआई के विषय में। आइए क्या बात हुई सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
1: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
2: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, बेहतरी

0: जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। AI एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है। मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है, और इसे कैसे देखते हैं आप?
1: हाँ, ये बहुत खौफनाक है, और ये AI का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती, और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुठलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
0: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहाँ पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है, और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
1: एक इंसान को व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती है। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूँ तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
0: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इसमें?
1: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म है, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए, और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इंपैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
2: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 FM के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
3: Hi everyone, this is Dania Doshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है तब तक वो राष्ट्र भी सशक्त है। राष्ट्रीय एकता लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त और संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वो भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता और संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में बांधती है। अनेक विभिन्नताओं के बाद भी सभी लोग परस्पर मेलजोल से रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में हैं, उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिले। हमारे देश में अनेक जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन, खान पान और वेशभूषा बिल्कुल अलग है। ये सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, वो हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि और हमारा राष्ट्र होती है। उसके प्रति गहरा प्रेम ही राष्ट्रीयता की भावना होती है। हम सदैव उसके गौरव की रक्षा करें और साथ ही उसकी संस्कृति, उसके प्राकृतिक संसाधनों और उसकी आर्थिक समृद्धि में योगदान करने का दायित्व निभाएं और ऐसी

तो हमारी राष्ट्रीय एकता यूं ही मजबूती के साथ बनी रहे, इसके लिए हमें आपसी भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भावना को बढ़ावा देना होगा। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही राष्ट्रीय एकता की, और जब बात राष्ट्र की हो रही है तो इस

नमस्कार मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये देशभक्ति गीत। किसान मित्रों, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर फसल को आवश्यकता अनुसार पानी ना मिले तो फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और हमारे देश में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। ऐसी जगह पानी की बहुत किल्लत रहती है और फसलों को उचित मात्रा में पानी भी नहीं मिलता और किसान भाइयों को खेती करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसान मित्रों, आपको बता दें कि हमारे देश की 85% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल का उपयोग करती है। 65% भूजल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की पानी की जरूरतों को भी भूजल से ही पूरा किया जाता है। पानी के इसी अतिदोहन और अनियमित उपयोग के कारण भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार ने अटल भूजल योजना चलाई है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा सामुदायिक नेतृत्व वाला भूजल प्रबंधन कार्यक्रम है। इस योजना का लक्ष्य देश के उन इलाकों में भूजल के स्तर को ऊपर उठाने का है, जिन इलाकों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। योजना का उद्देश्य भूजल की मात्रा में इजाफा करना है, साथ ही किसानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से भी ये योजना भारत सरकार की ओर से लाई गई है। इस योजना के तहत भारत सरकार किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल भंडारण सुनिश्चित करेगी। साथ ही सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना अटल भूजल योजना के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान।

मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये देशभक्ति रागनी। किसान मित्रों, आजकल हर कोई किसान भाई चाहता है कि वो अपने खेत में 12 महीने फसल उगाए और उसे बेचकर अच्छे पैसे कमाए। ऐसे में ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल करके आप खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने खेत में 12 महीने खेती करना चाहते हैं तो आपको ग्रीन हाउस तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका सहारा लेना पड़ेगा, तभी आपकी ये इच्छा पूरी होगी। और इस तकनीक से आप 12 महीने खेती कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। किसान मित्रों, ग्रीन हाउस का मतलब ऐसी परिस्थिति से जहां आप स्वयं से वातावरण को नियंत्रित करके फसल को आसानी से उगा सकते हैं। ग्रीन हाउस तकनीक से फसलों को विकसित करने और उत्पाद बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये फसलों को संरक्षित करने का एक तकनीक है। तो किसान मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खेत में 12 महीने फसल करें तो आपको ग्रीन हाउस तकनीक का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर आप इस तकनीक का सहारा लेकर के फसल करना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के इस तकनीक के बारे में और विस्तार से समझ सकते हैं और किन किन उपकरणों की इसमें आवश्यकता होगी ये भी आपको वहां बता दिया जाएगा। साथ ही साथ कोई प्रशिक्षण होता होगा इसके बारे में तो वो भी आपको दे दिया जाएगा। जब आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तब इस तकनीक के जरिए आप 12 महीने खेती करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना ग्रीन हाउस तकनीक के बारे में। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक और देशभक्ति रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और पूजा शर्मा।

ज्ञानेंद्र सरधाना और पूजा शर्मा द्वारा गाई गई इसी देशभक्ति रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

तो दोस्तों हरिया की और काले की दोनों की बात की थी और दोनों के दुख भरे शब्द मुंह से निकल रहे थे। मेहरबानों, कालिया ने कह दिया, हरिया तैने बहुत बड़ा अपराध किया, तैने अपनी ब्याही से और अपने मरे पुत्र पर कर ले लिया, इससे बड़ा अन्याय और अधर्म भला इस दुनिया में कौन सा होगा। लेकिन कालिए, मैंने अपना धर्म निभाने की खातिर, तेरे हुक्म की खातर और तेरे भय की खातर मैंने सब कुछ जो कुछ किया है वो इसीलिए किया। मेहरबानों, हरिश्चंद से कह दिया, हरिश्चंद एकदम चला जा, जिस दुखिया को मैंने सताया है उसके चीर को वापस दिया। मेहरबानों, हरिया काले की बातों को सुनकर के और शमशाना की ओर बढ़ गया, लेकिन तारावती तो उसे वहां नहीं पाई। मेहरबानों, तारा वहां से रूपोश हो गई और अपने बेटे के बैराग में, उस वियोग में

वो छलिया विश्वामित्र जिसने राज को लिया था और जिसने हरिश्चंद्र को भंग के घर बिकवाया था और तारा रोहतास को रामलाल पंडित के यहाँ केवल 60 भार सोने के बदले। दोस्तों, उसी ने रोहित को शराब बन के डस लिया और उसी ने आज तारा के मुंह पर खून लगा दिया और उसके आगे खेत कलर का आधा शरीर कच्चा होया और आधे से रक्त बह रहा था। आज तारा को डायन बना दिया और उधार काले को आदेश दे दिया वहां के राजा ने काशी, काले इस डायन को मरवा दो, ये मानस खानी है। मेहरबानो, आज हरिश्चंद्र के हाथ में खूनी तलवार और अपनी

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो।

0: तो इस तरह सुपर हीरो जल रक्षक ने पानी बचा के पूरी दुनिया को बचाया।
1: वाओ, जल रक्षक की कहानी तो कमाल है अप्पा।
0: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी। तारा अब तुम सो जाओ, कल सुबह चमन तुम्हारे साथ खेलने आने वाला है।
1: बहुत मजा आएगा।
2: हाय तारा।
1: ओह हाय चमन, आओ मेरे साथ फल खाओ, फिर हम खेलेंगे।
3: मैं बस साबुन से हाथ धोकर आता हूँ।
1: अरे चमन पानी वेस्ट कर रहा है, लगता है सुपर हीरो जल रक्षक को फिर से पानी बचाना पड़ेगा।
2: अरे तारा ये क्या?
1: तारा नहीं, जल रक्षक तारा।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
1: हर दिन हर व्यक्ति को जितना पानी पीने और खाना बनाने में लगता है, लगभग उतना ही पानी एक व्यक्ति साबुन को हाथ पर या बर्तन पर मलते समय, ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल को खुला रखने से बर्बाद कर देता है।
3: अच्छा, मैंने तो ये सोचा नहीं था तारा। ओ, मेरा मतलब जल रक्षक तारा।
1: और नल या पाइप में केवल एक लीकेज से ही हर दिन लगभग उतना पानी बर्बाद हो जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में घर के सारे काम करने के लिए उपयोग करता है।
3: अरे बाबा रे,
1: आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता। जरा सोचो चमन, ये समस्या है कि नहीं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है।
3: हाँ तारा, सच्ची ये बहुत बड़ी समस्या है।

0: चलो चमन अब हम खेलें।
1: ओके। तारा मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ, ठीक है?
0: पीने का पानी? चमन रुको, हाथ को खड़ी में डुबोने से ये पानी दूषित हो गया है।
1: हैं? लेकिन पानी दिखने में तो बिल्कुल साफ है।
0: पानी दिखने में साफ हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि ये पीने लायक भी हो। पता है कुछ जल स्रोतों जैसे कम गहरे हैंडपंप का पानी भी दिखने में साफ होता है, पर पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता।
1: हैं?
0: पानी में जीवाणु, विषाणु या कई प्रदूषक तत्व हो सकते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देते, और दिखने में पानी साफ लगता है। इसीलिए बिना पानी की जांच किए हम नहीं जान सकते कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं।
2: अरे बाबा रे, तो फिर

0: जरूरी।
1: बात तो ठीक है जल रक्षक तारा, पर पानी की जांच होगी कैसे?
0: चलो चलो अप्पा से पूछते हैं।
1: ओके
0: अप्पा।
2: अब सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत को जल जांच किट दी जा रही है और हर एक ग्राम पंचायत से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे हर महीने अपने पंचायत के सभी जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच और स्वच्छता निरीक्षण सुनिश्चित हो।
3: वाह अंकल, आप भी जल रक्षक?
2: हमारी पूरी फैमिली ही जल रक्षक है।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
3: मैं भी बनूंगा जल रक्षक।

0: पानी में गंदे हाथ या गंदे बर्तन?
1: नो नो नो नो,
2: समझ गया। अब मैं भी जल रक्षक बन गया।
3: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
4: कहीं पानी बर्बाद हो रहा है,
2: लगता है वहाँ जल रक्षकों की जरूरत है।
4: चलो।
0: तुम सब भी जल रक्षक बन सकते हो, आज से अभी से शुरू करो, खुद का पानी खुद निगरानी।
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने

0: The world is here at Sharda University.
1: सुनो शारदा 90.8 FM पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। हमारा रेडियो स्टेशन यही कहता है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और यही वजह है कि स्मार्ट के सौजन्य से एक खास कार्यक्रम यहाँ से हम लोग ऑन एयर कर रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। और इसी संबंध में बहुत सारी बातें महिलाओं से संबंधित लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जैसे कि एक खास विषय है महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इसके अंतर्गत वो कौन कौन सी खास बातें आती हैं, समस्या है तो जाहिर सी बात है कि समाधान भी है। कानून के जरिए हम अपने हक कैसे ले सकते हैं, कुछ बातों से हम अनभिज्ञ हैं। जी हाँ, यही एक वजह कि एक खास प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वार्ता के जरिए। चलिए बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये परिचय आखिर कहता क्या है। पितृ सत्तात्मक यानी पुरुषों द्वारा नियंत्रित समाज में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमतर माना जाता है। पितृ सत्ता असमान सत्ता संबंधों पर आधारित है जिसमें महिला के जीवन के हर पक्ष पर पुरुष का नियंत्रण होता है। परिणाम स्वरूप महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच कम होती है और परिवार में पुरुषों के मुकाबले उनकी आवाज बहुत कम या न के बराबर सुनी जाती है। और ऐसा अक्सर हमने घरों में देखा है ना। और इसी के चलते महिलाओं पर प्रभुत्व पुरुषों का रहता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस व्यवस्था का पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक आयदों और सांस्कृतिक मूल्यों के नाम पर पोषण होता रहता है। इससे महिलाओं का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। ये परिचय का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपकी भी कुछ ऐसी ही बात है या ऐसी ही कहानी है तो प्लीज आप मुझे जरूर साझा करें 01204060205 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के साथ भेदभाव का चक्र उनके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है जहां लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसके कारण हम लिंग चयन आधारित भ्रूण हत्या के मामले अक्सर देखते हैं। ये भेदभाव और असमान सामाजिक दर्जा महिलाओं पर होने वाली हिंसा के मूल कारण है। मुझे लगता है कि ये जो कहानी है, ये जो बातें हैं, वो आपकी हमारी या समाज में जो हो रहा है वो बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। महिला हिंसा एक गंभीर समस्या है जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में महिलाओं को प्रभावित करती है। इसकी जड़ें सामाजिक ढांचों में है और समाज के सभी वर्गों में फैली हुई है। हर उम्र वर्ग धर्म सांस्कृतिक जाति इलाके और शैक्षिक स्तर की महिला इससे प्रभावित होती है। यद्यपि आमतौर पर माना यह जाता है कि पुरुष ही महिलाओं पर हिंसा करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अक्सर औरत अपने परिवार की पितृ सत्तात्मक सोच वाली महिला सदस्यों द्वारा भी हिंसा का शिकार होती रहती है। अधिकांश मामलों में हिंसा परिवार या पास पड़ोस के दायरों में ही होती है। हिंसा कहीं भी केवल गरीबी एवं अज्ञानता से जुड़ी हुई समस्या नहीं है। हिंसा सिर्फ एक पारिवारिक या निजी मामला नहीं है, ये एक सामाजिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य की भी समस्या है। चलिए, ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है और इस संबंध में जब ब्रेक के उस पार में आपसे जुड़ूंगा तो बात करूंगा हिंसा के रूप कौन कौन से है और कारण क्या है, इससे हम कैसे अपने आप को बचाकर रख सकते हैं और जाने अनजाने में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप महिलाओं पर ये अत्याचार कर रहे हैं और हो सकता है कि फिर आपके खिलाफ कार्यवाही हो जाए और फिर आपको लेने के देने पड़ जाए। इसके बारे में विस्तार में चर्चा जरूर करेंगे मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए विशेष कार्यक्रम महिलाओं पर आधारित। मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वाकई एक खास विषय है जिस पर हर कोई बात करना चाहता है, जिसके बारे में हर कोई समझना चाहता है। और मुझे लगता है कि ये अपने अधिकारों की बातें हैं जिनके बारे में महिलाओं को पुरुषों को पता होना चाहिए कि हम जाने अनजाने में सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो इसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो उस वक्त आप अपने आप को रोकिए। मुझे लगता है कि ये जो चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, इन बातों से आपको समझ में आएगा कि क्या हम सही कर रहे हैं या हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो रही है। विषय है महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इसके अंतर्गत कुछ जागरूकता वाली बातें हैं जिसके विषय में मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं। पहले बात यह आती है कि हिंसा के रूप क्या क्या हैं, वो कारण कौन कौन से हैं। इससे पहले थोड़ा मैं समझना चाहता हूं और आपसे डिस्कस करना चाहता हूं लिंग यानी सेक्स एवं जेंडर। जेंडर आधारित हिंसा के जटिल निर्धारक हैं। लिंग का अर्थ होता है महिला एवं पुरुष की जैविक एवं शारीरिक गुण। जेंडर का तात्पर्य वो भूमिकाएं व्यवहार गतिविधियां एवं गुण जिन्हें किसी समाज में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए उपयुक्त समझा जाता है। लिंग आधारित गुणों के कुछ उदाहरण हैं, मसलन जैसे कि महिलाओं को महावरी यानी मासिक धर्म होता है जबकि पुरुषों को नहीं। महिलाओं में स्तन होते हैं, सामान्यतः दूध बनाते हैं, जबकि पुरुषों में ऐसा नहीं होता है। अब मैं उसी टॉपिक पर आता हूं जिसके विषय में मैं आपसे बात कर रहा था, हिंसा के रूप और कारण के बारे में। महिला हिंसा के कई रूप देखे जा सकते हैं। सबसे पहले बात सामने आती है शारीरिक हिंसा के बारे में। थप्पड़ मारना, कट पिट जाना, दांत काट लेना, बाल खींचना, मारना, मुक्का मारना, लात मारना, हड्डी तोड़ना या हथियार के द्वारा बिना हथियार के चोट पहुंचाना, तेजाब से हमला करना, गला घोटना और प्रताड़ना के कारण हुई गर्भावस्था की जटिलताएं। दूसरा टॉपिक है यौनिक हिंसा, यानी कि इसके संबंध में बात सामने आती है यौनिक हमले जैसे बलात्कार या बलात्कार की कोशिश, जबरन यौन संपर्क या ऐसी कोई गतिविधि, छेड़छाड़ करना, पीछा करना, यौन कार्य के लिए खरीद फरोख्त करना, जबरन विवाह या बाल विवाह करना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न करना, परिवार नियोजन के साधन प्रयोग करने से रोकना, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा यौन प्रयास करना, बच्चों का यौन शोषण, जबरन या तकलीफ देह यौन क्रिया एवं यौन संबंध से वंचित रखना इत्यादि। आर्थिक हिंसा, इसके संबंध में विशेषज्ञ बताते हैं कि पुश्तैनी संपत्ति और पैसों से जुड़े अधिकार न देना, भोजन कपड़ा शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से वंचित रखना, महिलाओं को काम करने से रोकना, खर्च किए गए पैसे का उत्तेजित होकर हिसाब मांगना, दहेज की मांग, मुफ्त में घरेलू श्रम कराना, सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों द्वारा पैसों से संबंधित उत्पीड़न करना इत्यादि वगैरह वगैरह। चौथा पॉइंट आता है भावनात्मक हिंसा। उपेक्षा, मानसिक आघात, मार डालने या अन्य प्रकार से नुकसान पहुंचाने की धमकियां, अकेला रखना, शक करना, गाली गलौज व ताने, बच्चों के पैतृत्व के अधिकार से वंचित रखना, महिलाओं को सार्वजनिक रूप से या अकेले में अपमानित करना और उसके हर काम में कमियां निकालना इत्यादि। तो इस प्रकार से कुछ रूपों के बारे में मैंने यहाँ आपसे चर्चा की और उसको विस्तार से भी मैंने आपको बताया कि क्या अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा है तो ये एक अपराध है जो शायद आप जानते भी नहीं, और अगर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं तो ये एक गुनाह है और आप इस दंड के भागीदार हो सकते हैं, यानी कि आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। अगर ऐसा आपसे हो रहा है तो प्लीज आप अपने आप को रोकिए, अपने आप को सुधारिए ताकि हम महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोक सके, और यही यानी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्देश्य है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मगर एक छोटे से अंतराल के बाद, आप कहीं जाएगा मत। हाँ, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो 01204060205 पर आप अपने मन की बात मुझसे साझा कर सकते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन मेरे यानी गगन के साथ।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात कर रहे हैं महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास। इसी संबंध में बहुत सारी बातें आपसे मैं साझा कर रहा हूँ। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ हिंसात्मक व्यवहार जैसे शारीरिक या यौनिक तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन भावनात्मक और आर्थिक हिंसा को अक्सर हिंसा के रूप में देखा ही नहीं जाता। आपके गांव और आसपास के समुदाय में हर रोज महिलाओं के साथ हिंसा की जो घटनाएं हैं वो लगातार होती रहती हैं और अमूमन उनको हम देख भी रहे होते हैं। महिला हिंसा का दायरा पूरे जीवन को समेटे रहता है। जीवन की शुरुआत यानी लड़की के जन्म के पहले से हिंसा बुढ़ापे तक चलती रहती है। आप ऐसे मामले अक्सर देखते होंगे या देखती होंगी जहां गर्भ सिर्फ इसलिए गिराया गया क्योंकि वो एक लड़की थी। लड़कियों की उपेक्षा आम बात है, ये विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, जैसे उन्हें स्तनपान से वंचित रखना, भाइयों के मुकाबले कम खाना देना अथवा लड़कों के खाने के बाद लड़की को खाना देना, बीमार पड़ जाने पर अस्पताल न ले जाना, स्कूल न जाने देना, विवाह की वैध आयु अर्थात 18 साल की उम्र के पहले ही शादी कर देना इत्यादि। अक्सर हम सब ने अपने आसपास महिलाओं के साथ छेड़खानी और शोषण की घटनाएं देखी सुनी भी होगी। महिलाओं पर यौन हमलों के अलावा तेजाब फेंके जाने की घटनाओं के बारे में भी हमने सुना होगा। यौन हिंसा नवजात शिशु से लेकर किशोरावस्था तक हो सकती है। हिंसा के अन्य स्वरूपों में जो चीजें शामिल हैं, दहेज उत्पीड़न, परिवार, जाति या समुदाय की इज्जत की रक्षा के नाम पर अत्याचार, यानी समाज या परिवार के नियम कानूनों के खिलाफ विवाह करने वाले जोड़ों की हत्या अथवा तरह तरह की यातनाएं उन लोगों को दी जाती हैं। काम की जगह, स्कूलों या सार्वजनिक जगहों पर खौफ और उत्पीड़न का सामना करना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर और आप तक पहुंचाकर मुझे सही नहीं लग रहा। ये वो बातें हैं जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं आसपास हो रही है। हिंसा का सामना केवल लड़कियों और युवतियों को ही नहीं करना पड़ता, बल्कि बुजुर्ग महिलाएं भी अक्सर हिंसा की शिकार होती हैं। उनकी उपेक्षा की जाती है, उनकी सेहत की देखभाल तक नहीं की जाती, पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाता, उनसे तुच्छ काम करवाए जाते हैं या कभी उन्हें असहाय भी छोड़ दिया जाता है। घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा का सबसे सामान्य रूप है। ये पति या निकट के पारिवारिक सदस्यों द्वारा की जाती है। घरेलू हिंसा में जो बातें मैं आपसे साझा कर रहा हूं सभी प्रकार की हिंसाएं शामिल हैं, यानी शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन हिंसा। इसके अलावा पति या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए जाने वाले बलात्कार सहित किसी भी तरह के यौन हमले को यौन हिंसा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इस तरह की हिंसा ओझल रहती है क्योंकि ये घर की चार दीवारी के भीतर होती है और अक्सर लोग इसे हिंसा के रूप में न देखकर परिवार का निजी मामला और जीवन का सामान्य हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। तो कहने का आशय हमारा यही है, इन जागरूकता वाली बातों को आपको सुनना समझना चाहिए और अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत है। ये फैसला खुद हमारे परिवार जन को करना पड़ेगा। ब्रेक पर जाने से पहले घरेलू हिंसा के कुछ प्रकार के बारे में मैंने बातें आपसे साझा की। अब बात करते हैं, अक्सर दुर्व्यवहार की शिकार महिलाएं मदद लेने से झिझकती हैं। कहीं ना कहीं एक डर, घबराहट, शर्माहट होती है क्योंकि वे शर्म और अपराध बोध से घिर जाती हैं। उन्हें अपने ऊपर आरोप लगने का डर रहता है। वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती। नकारात्मक और बुरे अनुभवों के कारण उन्हें ये भरोसा नहीं होता कि विभिन्न संस्थान और लोग यानी पुलिस, डॉक्टर उनकी मदद कर सकते हैं। परिणामों के डर और परिवार की इज्जत बचाने के महिलाएं अपने ऊपर होने वाली हिंसा को बर्दाश्त करती रहती हैं और ऐसा अक्सर हमने अपने अपने घरों में देखा है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। वो ये सोच कर भी चुप रह जाती हैं ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। अपनी आवाज उठाने पर महिलाएं अक्सर अपनी ससुराल के घर से निकाल दी जाती हैं और अक्सर उन्हें अपने मायके के घर से भी कोई सहारा नहीं मिलता। इस डर के कारण महिलाएं अक्सर अपनी आवाज बिल्कुल भी नहीं उठा पाती, किसी से कुछ कह नहीं पाती। एक अकेले रहने वाली महिला या अपने मायके में रहने वाली महिला को भी समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणाम होते हैं। महिलाएं लगातार अपने अधिकारों और हितों से वंचित रह जाती हैं। सार्वजनिक और राजनीतिक मंचों पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। और इसके अलावा अक्सर हम जो चीजें देखते हैं, जैसे कि निर्णय लेने के पदों पर पहुंचने के अवसर घट जाते हैं। स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार अवसरों तक उनकी पहुंच भी सीमित हो जाती है। एक आशा के रूप में कहीं ना कहीं एक महिला दूसरी महिला की मदद भी कर रही होती है। उनके साथ पहले से ही आपका तालमेल बना रहता है ना? जो आपको अच्छी लगती हैं, आप उनसे बातें भी करती हैं। मैं विशेषकर महिलाओं की बात करता हूँ। और कहीं ना कहीं अक्सर हमने ये देखा है कि एक महिला दूसरी महिला को पसंद नहीं करती, या सीधे लफ्जों में कहें कि एक महिला दूसरी महिला की दुश्मन तक हो जाती है। कहीं ना कहीं हम समाज में ये देखते हैं कि ऐसी महिलाओं को ढूंढना आसान है जिन्हें हिंसा का कोई खतरा है या जो किसी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही है। चलिए, और क्या है खास इसके विषय में हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ।

एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, इस संबंध में बहुत अच्छी जानकारी मैं जुटा कर लेकर आया हूँ आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी का आप लाभ उठाएंगे, उठाएंगी। लगता है कि कोई सवाल है तो जरूर आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं 0120-4060205 पर। अब बात करते हैं कुछ कारणों की और उन कारणों को उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। महिलाओं और पुरुषों की सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भूमिकाएं और उनकी साथ ही साथ उनसे जुड़े व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति। उदाहरण मसलन जैसे लड़कों साथ ही पुरुषों को कठोर और आक्रामक होना चाहिए, जबकि लड़कियों इसके अलावा महिलाओं को विनम्र, आज्ञाकारी और शांत होना चाहिए। दूसरी बात, महिलाओं की गतिविधियां खाना पकाने, घरेलू काम और पति साथी बच्चों की देखभाल तक सीमित होनी चाहिए। लड़कियों और महिलाओं को सही ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। अगर पुरुष उन पर यौन हिंसा करते हैं तो लड़कियां ही उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाने की दोषी हैं। दूसरा कारण समझते हैं रिश्तों से जुड़ी भूमिकाओं और असमान सत्ता संबंधों के बारे में अपेक्षाएं।

पुरुष जो चाहे कर सकता है और अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह का व्यवहार कर सकता है, लेकिन पत्नी को हमेशा अपने पति का कहना मानना चाहिए। तीसरा कारण समझने की कोशिश करते हैं, डायन, चुड़ैल, जादू टोना, प्रथा और उससे जुड़ी प्रथाओं से संबंधित अंधविश्वास। विशेषज्ञ इसका उदाहरण देते हैं, जो महिलाएं गंभीर मानसिक आघात से पीड़ित होती हैं, उन्हें डायन करार दे दिया जाता है और अक्सर उन्हें अत्याचार सहने के लिए विवश किया जाता है या उन्हें समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अगला कारण है ये मानना कि पुरुष जन्म से ही श्रेष्ठ और बुद्धिमान होते हैं। उदाहरण, पुरुषों को इस सोच के साथ बड़ा किया जाता है कि उन्हें कुछ खास चीजों पर अधिकार है, जैसे एक अच्छी पत्नी पाने का अधिकार, बेटों पर अधिकार और परिवार के सभी फैसले लेने का अधिकार, सिर्फ इसलिए कि वो पुरुष है। इसके पीछे छुपे हुए कारण संपत्ति पर अधिकार और महिलाओं को इस अधिकार से बाहर करने के प्रयास से जुड़े हुए हो सकते हैं। अगला कारण, मान्यताएं जो पुरुषों को महिलाओं पर विशेष अधिकार देती हैं। उदाहरण, पुरुष सोचते हैं कि महिलाएं और लड़कियां उनकी संपत्ति हैं, जिन पर उनका पूरा अधिकार है। वो सोचते हैं कि उनके साथ वो चाहे जैसा व्यवहार कर सकते हैं, जबकि ये गलत बात है। अगला कारण आता है कि परिवार को निजी क्षेत्र यानी दायरे के रूप में देखना और उस पर पुरुष का नियंत्रण होना। उदाहरण बतौर बात सामने आती है कि कई लोग सोचते हैं कि घरेलू हिंसा के मामलों में हस्तक्षेप करना उनका काम नहीं है। मियां बीबी या परिवार के निजी मामलों में दखल देना सही बात नहीं है, जबकि सच ये है कि महिला हिंसा के किसी मामले को जानने पर उसमें हस्तक्षेप न करना अपराध है। अगला कारण है विवाह से जुड़ी प्रथा यानी वधू की कीमत देना अथवा दहेज। इसमें बात सामने आती है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को उसके पति और पारिवारिक सदस्यों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। वैसे देखा जाए तो कारण कई सारे हैं, कई सारे उदाहरण हैं। इसके बारे में जब चर्चा हो रही है तो यकीन मानिए कि ये बातें मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपसे जुड़ेंगे ही, कहीं जाएगा मत। बहुत अच्छी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी यानी सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। महिला हिंसा के खिलाफ सामूहिक प्रयास, इसी संबंध में ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कुछ कारणों के बारे में जिक्र किया उदाहरण के साथ। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ कारण और कुछ उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। हिंसा को विवाद झगड़ा सुलझाने के तरीके के रूप में देखना एक कारण। उदाहरण, परिवारों द्वारा समुदायों में झगड़े का बदला महिलाओं के साथ हिंसा के रूप में लिया जाता है। दूसरा कारण, महिलाएं अक्सर बेरोजगार होती हैं या आर्थिक संसाधनों तक उनकी बहुत कम या न के बराबर पहुंच होती है। नकद और ऋण के संसाधनों तक सीमित पहुंच के कारण महिलाएं अक्सर पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाती हैं। उदाहरण बताते हैं विशेषज्ञ कि वित्तीय संसाधनों की कमी और इसके कारण पति या उसके परिवार पर पैसों के लिए निरंतर निर्भरता महिलाओं को अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, आवाज उठाने से भी रोकती है। इसी में बात आती है कि अपमान करने वाले पति के साथ रहने के लिए औरत विवश होती है क्योंकि उसके पास न तो पैसा होता है और न कहीं जाने के लिए सुरक्षित ठिकाना। अगला कारण समझते हैं, परिवार में भेदभावपूर्ण परंपरागत नियम रिवाज जो महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखते हैं। उदाहरण के तौर पर बात सामने आती है कि कानून द्वारा दिए गए अधिकारों के बावजूद कई परिवार अपनी बेटियों को पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सा और संपत्ति में अधिकार नहीं देते। अगला कारण, महिलाएं अधिकारों से जुड़े कानून के बारे में जागरूकता का अभाव, ये एक सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है। तो यही एक वजह है कि जागरूकता वाली बातें सामुदायिक रेडियो स्टेशन यानी कि सुनो शारदा 90.8 FM आप तक पहुंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर बात सामने आती है कि दहेज, PCPNDT, यौन उत्पीड़न, वैवाहिक बलात्कार, घरेलू हिंसा, तलाक के बाद वित्तीय गुजारा भत्ता, बच्चों की अभिरक्षा जैसे मुद्दों पर और हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने वाले कानूनों के बारे में जागरूकता की कमी महिलाओं को अपने ऊपर होने वाले हिंसात्मक व्यवहारों के खिलाफ खामोशी तोड़ने से रोकती है। महत्वपूर्ण हितभागी जैसे पुलिस अभी भी घरेलू हिंसा को एक निजी मामला मानते हैं, ये एक बड़ी गलती है। अगला कारण है कि महिलाओं और लड़कियों के साथ पुलिस और कानून व्यवस्था द्वारा असंवेदनशील व्यवहार, ये सबसे गलत बात है। उदाहरण के तौर पर बात सामने आती है कि पुलिस महिलाओं की शिकायत दर्ज नहीं करती, खास तौर से तब जब वो समुदाय के किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा सताई गई। घरेलू हिंसा के मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जाता और हमेशा महिला को ही दोष दिया जाता है। कई बार पुलिस शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाओं को ही तंग करने लगती है। एक और कारण सामने आता है कि न्याय मिलने में देरी होना। इस बात को एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। न्यायालय में मामलों का कई सालों तक खींचते रहना, कानूनी प्रक्रियाओं में बहुत समय लगाना और बहुत कम ही मामलों में अपराधी को सजा मिलना, ये सभी कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे महिलाओं में हिंसा के मामलों में आवाज उठाने या कानूनी सहायता लेने का साहस नहीं हो पाता और वो हिंसात्मक परिस्थितियों में रहती जाती हैं। कहने का आशय यह है कि समाज में इस बात की जागरूकता जरूर होनी चाहिए कि सभी महिलाओं के साथ हिंसा का जोखिम बना रहता है, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा सदैव दिखाई नहीं देती। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मौखिक हिंसा शारीरिक उत्पीड़न का रूप भी ले सकती है। कुछ विशिष्ट संकेतों, लक्षणों, व्यवहारों तथा जीवन की स्थितियों के बारे में सचेत रहकर आप खतरों से घिरी हुई या हिंसा का सामना कर रही महिलाओं की पहचान कर सकते हैं। ये कुछ खास बातें, अच्छी अच्छी बातें मैंने आप तक पहुंचाई। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इस कड़ी में और भी बातें शेष हैं, वो बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा जरूर। फिलहाल अपने शब्दों पर यही विराम लेते हुए मैं आपसे लेता हूं अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, महिलाओं का सम्मान करिए, उनको इज्जत दीजिए, उनका ख्याल रखिए। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। नमस्कार।

रैंक नंबर 20, सिटी पटना, पॉपुलेशन 2011 16.84.222, पॉपुलेशन 2001 13.66.444. क्वेश्चन, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय अप्रोक्सीमेशन. फर्स्ट वन, व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डेटा, शेयर इट विद द क्लास. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज एन अप्रोक्सीमेट टाइटल फॉर द अबाउट टेबल. क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011, अप्रोक्सीमेटली बाय हाउ मच हैज इट इंक्रीज्ड कंपेयर्ड टू 2001. क्वेश्चन नंबर फोर, विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट बिटवीन 2001 एंड 2011. क्वेश्चन नंबर फाइव, आर देयर सिटीज हुज पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, विच आर दे. क्वेश्चन नंबर सिक्स, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई पटनास पॉपुलेशन टू गेट अ नंबर और पॉपुलेशन क्लोज टू दैट ऑफ मुंबई. 1.5 पैटर्न्स इन प्रोडक्ट.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आपने कहावत तो सुनी होगी कि एक सफल इंसान के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि अगर महिला खुद सफल हो, सफलता की सीढ़ियां वो चढ़ रही है, तो उसके पीछे सफलता का राज क्या है। जी हाँ, आज एक ऐसे ही खास विषय पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्टार्टअप चर्चा के माध्यम से बहुत सारी बातें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इसी श्रृंखला में स्टार्टअप चर्चा के तीसरे एपिसोड में आज हमारे साथ कुछ ऐसी सफल उद्यमी, जिन्हें हम कह सकते हैं कि जिन्होंने मेहनत के बलबूते पर अपने आप को स्थापित किया है, अपना काम दिखाया है और अपना नाम बनाया है, एक ब्रांड बनाया है। जी हाँ, आज की जो थीम है वो है विमेन एंटरप्रेन्योर्स, और आज के जो हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर दिव्या राजपूत, द स्टार्टअप पॉलिसी एक्सपर्ट एंड इनक्यूबेशन हेड एट JSS। दूसरी गेस्ट हैं डॉक्टर श्रद्धा अवस्थी, अ लीडरशिप एंड स्किल कोच, और हमारी आज की तीसरी मेहमान है मिस सुरभि गुलाटी गुप्ता, द इंस्पायरिंग स्टार्टअप फाउंडर ऑफ अ विमेंस बेकरी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, और इस कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं, या यूं कहें कि मॉडरेटर हैं, मिस वाणी कपूर शारदा लॉन्च पैड फेडरेशन से। आइए सुनते हैं ये परिचर्चा कि कैसे जिंदगी में सफल हुआ जा सकता है, कैसे अपनी सोच को आगे लेकर जाया जा सकता है, कैसे किन किन परेशानियों से जूझते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए एक सफल इंसान बना जा सकता है। कुछ ऐसी बातें होंगी इस स्टार्टअप परिचर्चा के दौरान, तो आइए चलते हैं इस परिचर्चा की तरफ।
2: I welcome all listeners to Sharda Launchpad's special talk show called Startup Charcha at Suno Sharda Radio. आज हमारे साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम की दो दिग्गज महिलाएं हैं, डॉक्टर दिव्या राजपूत हु इज अ स्टार्टअप एक्सपर्ट एंड JSS इंक्यूबेशन हेड, एंड द अदर वन इज डॉक्टर सुरभि गुलाटी हु इज स्टार्टअप फाउंडर हरसेल्फ एंड शी ओन्स अ वुमेन्स बेकरी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। तो आइए, एंड आई एम योर होस्ट वाणी कपूर फ्रॉम शारदा लॉन्च पैड, एंड आज हम इन लोगों की जर्नीज के बारे में जानेंगे, इनके जो भी इन्हें एक्सपीरियंस रहे और इनके जो भी चैलेंजेस रहे, वी विल डेल्व डीप इनटू इट एंड वील नो मोर अबाउट इट। मैम, आपसे शुरू करते हैं। दिव्या मैम, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एंड योर जर्नी इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम।
3: थैंक यू वाणी, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। So I'm Dr. Divya Raj

0: वी वेलकम यू ऑल बैक टू आवर शो। जैसा कि हम स्टार्टअप चर्चा पे चर्चा कर रहे थे विद डॉक्टर दिव्या राजपूत एंड सुरभि मैम। मैम दिव्या मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, बिकॉज आप काफ़ी सारे स्टार्टअप्स इंक्यूबेट करते हैं रेगुलरली, तो अकॉर्डिंग टू यू ऐसे कौन से इंक्यूबेशन प्रोग्राम जो है इंक्यूबेटर्स को ऑफर करने चाहिए जिससे कि स्टार्टअप्स को जो है यू नो दे आर नर्चर्ड इफेक्टिवली एंड यू नो स्टेप अप टू द ग्रोथ।
1: इंक्यूबेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। हम इसको बोलते हैं कि दिस इज़ पार्ट ऑफ अ ट्रिपल हेलिक्स मॉडल। ट्रिपल हेलिक्स जहाँ पे की गवर्नमेंट है, जहाँ पे की कॉर्पोरेट हैं और जहाँ पे की एकेडेमिया है। सो इंक्यूबेशन अक्सर आपने स्पेशली इंडिया में जब हम इंक्यूबेटर्स की बात करते हैं तो इंक्यूबेटर्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से शुरू हुए थे। हमारा स्टेपी जो है या अभी शारदा लॉन्च पैड जो है, ये हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हाउस्ड हैं। बिकॉज हमें ये पता है कि एकेडेमिया में टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं, हमें ये भी पता है कि एकेडेमिया में हमें अच्छे मेंटर्स मिल सकते हैं, एकेडमिक मेंटर्स। लेकिन जो हमारा पर्पस है इंक्यूबेशन करने का, वो गवर्नमेंट के साथ सॉल्व होता है या फिर कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज इंडस्ट्रीज के साथ सॉल्व होता है। सो इसलिए इंक्यूबेशन इसके यू नो कोर जंक्शन में है जहाँ पे ये ट्रिपल हेलिक्स को कवर करता है। सो इंक्यूबेशन में हमारे पास अर्ली स्टेज के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हम यू नो कुछ लोगों को सिर्फ आइडिएशन की अपॉर्चुनिटी दे सकें। तो हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस कहते हैं। तो ये एक साल की हम फेलोशिप देते हैं जिसमें कि यू नो जो एंटरप्रेन्योर है वो देख सकते हैं कि भाई इस एंटरप्रेन्योरशिप फॉर देम और नॉट, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो बने भी हैं कि नहीं। बिकॉज आप इतना ज़्यादा रिसोर्स अरेंज कर लेंगे और बाय चांस आपको थोड़े टाइम बाद लगे नहीं ये तो हॉबी थी, मतलब यू नो हाँ दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, अब मुझे आई हैव ग्रोन ओवर इट। तो बेटर है कि आप यू नो यू फेल फॉरवर्ड, यू फेल अर्ली, यू नो। सो उसके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप इन रेजिडेंस का प्रोग्राम है। फिर हमारे पास कुछ लेवल के प्रोग्राम्स हैं जिनको हम बोलते हैं I2P, मतलब आइडिया टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं। हमारे पास एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रयास प्रोग्राम है जिसमें हम उनको अप टू 10 लाख की ग्रांट फंडिंग देते हैं। इनोवेटर लेवल के हैं ये। इसके बाद जो P2M जिसको हम बोलते हैं, P2M सेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टू मार्केट। तो प्रोडक्ट टू मार्केट में हमारे पास इंक्यूबेशन का प्रोग्राम है, हमारे पास हाइब्रिड इंक्यूबेशन है और हमारे पास फिजिकल इंक्यूबेशन है। लेकिन ये दोनों जो इंक्यूबेशन के प्रोग्राम्स हैं इसके लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और उसके बाद जब आपने मान लीजिए मार्केट भी क्रैक कर लिया, अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतर गया है और आपको लगता है कि हमने एक ज्योग्राफी बहुत अच्छी कर ली और अब हम दूसरी ज्योग्राफी में जाना चाहते हैं, या हमारे पास एक नंबर यू नो जितने एक लोकेशन से आ सकते थे उतने हमने कैप्चर कर लिए पूरी मार्केट, अब हम दूसरी जगह जाके उसको अपने मॉडल को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन के प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं और हम फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। हम लोग सीड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग ग्रांट फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और हम लोग को इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं अपने एंटरप्रेन्योर्स को। सो सबसे जो ज़रूरी एस्पेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप पे ताकि वो स्केल अप कर पाए, एक तो है यू नो अवेलेबिलिटी ऑफ अ गुड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टार्टअप खुद बनाएंगे। दूसरा है मेंटर्स जो कि हम एज इंक्यूबेटर्स देते हैं, यू नो एक मेंटर प्लेटफॉर्म देते हैं। हमारे यहाँ पे तो इनफैक्ट एक मेंटर इन रेजिडेंस भी हैं जो हमेशा यू नो स्टार्टअप्स के लिए हाफ अ डे टाइप्स ही इज ऑलवेज अवेलेबल। सो समबडी हुज यू नो बीन एन एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, ही इज आर JSS एलुमनाई ओनली, हमारे स्टेप के एलुमनाई हैं एंड ही रन्स हिज मार्केट इंटेलिजेंस कंपनी। सो ही इज द वन हु इज ऑलवेज अवेलेबल टू स्टार्टअप्स। और यू नो इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे डोमेन एक्सपर्ट्स रहते हैं हु ब्रिंग दैट डोमेन वैल्यू ऑल्सो, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है। सो यू नो फॉर एनी वन पर्सन टू कीप पेस विद एवरी डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी इज नॉट पॉसिबल। सो द एक्सपर्ट यू नो एक्सपर्ट्स दैट वी हैव डोमेन एक्सपर्ट्स एज वेल एज एक मैंने बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल देखा है हमारे JSS स्टेप में वो है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स ही एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। सो हमारा जो एंटरप्रेन्योर नेटवर्क है, इवन हमारा एलुमनाई नेटवर्क है, दैट इज़ अ वेरी वाइब्रेंट कम्युनिटी। सो एंटरप्रेन्योर्स की आपस में क्रॉस लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज दे ऑल्सो कम फ्रॉम यू नो डिफरेंट बैकग्राउंड, दे हैव सो मच एक्सपीरियंस। तो या सो वो क्रॉस लर्निंग के हम उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देते हैं। सो मुझे लगता है कि इंक्यूबेशन कैन बी वाइड, इट कैन बी यू नो ह्यूज, इंटरनेशनल एक्सपोजर हो सकता है, इसके अलावा यू नो एग्जीबिशंस की अपॉर्चुनिटी हम उनको देते हैं, हमारे साथ एग्जीबिशन लगाने का भी अपॉर्चुनिटी देते हैं. सो मार्केट एक्सेस के लिए जो पॉसिबिलिटी हो वो देते हैं. लेकिन आई थिंक जो कोर पे ज़रूरी है वो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोग्राम. जैसे मैंने आपको बताया कि यू नो अर्ली स्टेज के, मतलब एंटरप्रेन्योर मैं बन भी सकती हूँ कि नहीं, एक तो ये लेवल, दूसरा फिर आई टू पी, आइडिया टू प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट टू मार्केट, और फिर एक्सेलरेशन. सो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग रन करते हैं. एंड वी इवन हैव अ प्रोग्राम फॉर कॉर्पोरेट इनोवेशन. अगर कॉर्पोरेट कभी सीखना चाहे कि ये इनोवेशन क्या चीज़ है, तो यू नो वी ऑल्सो हैव प्रोग्राम्स फॉर दैट.
0: दैट्स अमेजिंग. सुरभि मैम, आपका स्टार्टअप भी इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है, तो इनक्यूबेट होने से आपको क्या लगता है कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है? यू नो व्हाट काइंड ऑफ gain you've gained out of the incubation center?
2: Yeah, so I'll be honest here. I discovered what is incubation bahut der se. Mera idea product tak pahunch gaya tha. By then I was doing a part-time work because I needed money to fund my startup. And then when it was in the market, jab humne launch kar diya tha bakery.com platform, we had some 15-20 bakers who were baking on the for customer demands. That's when I wanted an office space. तो मैं ढूंढ रही थी, तब मैंने पढ़ा कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज इंक्यूबेटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सपोर्टिंग इंक्यूबेशन फॉर एवरी लेवल ऑफ स्टार्टअप्स लाइक दिव्या मैम जस्ट एक्सप्लेन. सो दैट्स व्हेन आई केम टू नो व्हाट इज इंक्यूबेशन. एंड लकीली आई वाज इन नोएडा एंड आई हैपन टू बी एट JSS, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज द वैल्यू दैट अ स्टार्टअप गेट्स बाय बीइंग इंक्यूबेटेड. ऑफकोर्स द मेन थिंग दैट आई लर्नड और दैट आई गेन्ड फ्रॉम देयर वॉज अ नेटवर्क. Right? Like she said, there is a network of other startups also. And हर कोई आपका product नहीं बना रहा है. वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप शायद नहीं जानते हो करना. And it is so easy to learn from someone else who's sailing in the same boat. And even on the cost, it is effective because someone else has already gone through the journey of learning. तो अगर मुझे even if I have to hire a vendor for something, मैं किसी आसपास वाले startup से बात कर लेती हूँ, मुझे ऐसा कोई vendor चाहिए, they tell me कि अच्छा मैंने ये 3-4 से try किया, this is the most cost effective and this is the best in quality. So आपकी वो learning easy हो जाती है, आपकी वो journey easy हो जाती है, and आपका time बहुत बचता है from that network. One, two, mentors help a lot. हमें लगता है कि सी आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट आई ऑलवेज हैड द कॉन्फिडेंस कि मैं संभाल लूंगी. बट ओनली व्हेन यू जंप इनटू द पूल यू रियलाइज कि स्विमिंग कैन नॉट बी डन. यस, दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि आपको कूदना है तो आपको सीखना भी पड़ेगा. एंड देन यू नीड अ पंचिंग बैग. यू नो फाउंडर्स कई बार हम लोग अपने अपने में ही ट्राई करते रहते हैं कि यार ये कर देंगे बहुत अच्छा बन जाएगा, ये कर देंगे बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आएगी, बट इट डजेंट वर्क लाइक दैट बिकॉज हम अपने साइलों में काम कर रहे हैं. यू नीड टू गेट आउट एंड टॉक टू पीपल, गेट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वो पॉइंट ऑफ व्यू मेंटर्स से बेटर नहीं बता सकता कोई और, क्योंकि दे हैव सीन सो मेनी अदर स्टार्टअप्स लाइक योर्स, अनलाइक योर्स, एंड दे हैव गेन्ड दैट एक्सपीरियंस of so many startups when no one person can do in a lifetime. So it's always better to have a second point of view or a third point of view, because when you are in an incubator, aapko ek do nahi kai log mil jate hain jinse aap brainstorming kar lete ho, jinse aap nayi cheeze seekhte ho ki acha ye technology nahi, there is a better technology that you can employ, I have read about it, or why don't you attend this session which is talking about this technology, and you gain so much out of it that you don't even realize that you have gained so much of skill. It's such a passive learning. But when it gets applied, you realize कि अच्छा ये तो मैंने यहीं से ही सीखा है, मेरा पुराना experience है ज़रूरी, but जो incubator से experience आता है, there is no match to it. And of course, when you go for funding, all of that experience helps you a lot.
0: मैम थोड़ा सा आप अपने स्टार्टअप के बारे में ब्रीफिंग दीजिए, ऑल्दो दैट शुड हैव बीन हैपन इन द बिगनिंग, यू नो आई शुड हैव आस्क्ड यू, बट थोड़ा सा मैम स्टार्टअप हमारे लिसनर्स के लिए, सो दैट दे विल नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग.
2: श्योर. सो bakehoney.com इज एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म. एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म क्या करता है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स को आपके सामने लाता है. हाउ bakehoney इज डिफरेंट इज, हम लोग खाली बेकरी को केटर करते हैं, एंड टुडे देर आर सो मेनी वुमेन होम बेकर्स एंड दे आर वर्किंग प्रोफेशनली. हम एक तरह से उन्हें सपोर्ट करते हैं, और कैसे सपोर्ट करते हैं कि देर आर कस्टमर्स ऑन वन साइड हु वॉन्ट हेल्दी होम मेड प्रोडक्ट्स, ऑन दी अदर साइड देर आर पीपल हु आर मेकिंग दीज हेल्दी होम मेड प्रोडक्ट्स, बट दे डोंट, बोथ ऑफ देम कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, क्योंकि वो होम बेकर शायद आप ही के एरिया में हो, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वो होम बेकर की एक लिमिटेड बैंडविड्थ है, वो केवल बेकिंग पे फोकस कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाने पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसे मार्केट नहीं कर सकते हैं. सो वी गिव देम अ प्लेटफॉर्म ऑन वन साइड. ऑन द अदर साइड कस्टमर्स हैव अमेजिंग रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि टुडे विद इंटरनेट विद द ग्लोबलाइजेशन हमें सब पता है कि यू नो किस तरह के डिजाइन ट्रेंडिंग है इन द वेस्ट. बेकिंग हैज कम टू इंडिया फ्रॉम द वेस्ट. So we are all exposed to the new trends in baking, but we don't know who can make that for us. So we give that platform to the customers ki aap yahan par naye latest designs, latest ingredients, latest quality of products ko explore kar sakte ho, being designed and being made by expert home bakers, and you can get them customized to your requirement. So that's the platform bakehoney.com. Currently we are operational across NCR in all the regions of NCR and in parts of Bangalore.
0: Ma'am, break mein jaane se pehle Devya ma'am ek question aapse poochungi. Startup is not just about founder, it is about the team as well. Puri team hai, but ek vision hai wo founder ka hota hai. To ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए एक फाउंडर को जिससे वो अपना विजन, वो इनोवेशन की कल्चर जो है वो अपनी टीम में भी बिल्ड कर पाए टू हैव अ सक्सेसफुल स्टार्टअप.
1: आई थिंक सबसे पहला जो स्टार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए मंडे मॉर्निंग मीटिंग,
0: द कल्चर.
1: यस. सो यू नो सी आई थिंक स्टार्टअप्स आर नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट. स्टार्टअप्स आर मोर मिशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस. अब आपका फाउंडर का वो मिशन है, लेकिन वो फाउंडर का मिशन आपकी टीम में कैसे जाएगा? ठीक है, तो उसके लिए आपको रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग उनके साथ करनी होगी, आपको उनके साथ नए प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने होंगे. सो यू नो बिकॉज सिर्फ आपके कहने से प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते, आपकी टीम अगर आपके साथ है जिनकी डिफरेंट डाइवर्स एक्सपर्टीज है, तो जॉइंट प्रोडक्ट्स कुछ क्रिएट हो सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि रादर मैं कहूँगी कि कभी कभी ये थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है, बहुत सारे स्टार्टअप्स को ऐसा लगता है कि हमारी टीम्स यू नो बिजनेस क्रैक नहीं कर पा रही हैं, सेल्स क्रैक नहीं कर पा रही हैं. तो उस केस में हमने ये भी देखा कि कभी कभी हो सकता है कि वो सही यू नो रिक्रूटमेंट ना हो, जैसे कॉर्पोरेट में भी होता है, जैसे कहीं भी होता है, एकेडमिक्स में होता है, कैन बी यू नो मे बी पीपल नॉट फिट फॉर दैट रोल, राइट. तो एक तो सही हायरिंग में फिर बहुत ज़रूरी है कि यू नो इफ द स्टार्टअप्स कैन क्रिएट एन ESOP पूल, मतलब एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ताकि एम्प्लॉयज़ को भी लगे कि अगर कल को कंपनी ये बड़ी हुई तो मेरा इसमें ओनरशिप है, तो वो ओनरशिप दे पाना. और अक्सर यू नो एंटरप्रेन्योर्स बिकम द बिगेस्ट बॉटलनेक आल्सो, बिकॉज हम डेलीगेट नहीं कर पाते, हमें हर चीज अपने तरह चाहिए बिकॉज हम परफेक्ट हैं, हमें लगता है हमारा काम परफेक्ट है तो हम ही एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, सो यू नो फाउंडर्स टू लर्न द आर्ट ऑफ डेलीगेशन एंड नॉट बिकमिंग अ बॉटलनेक. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काम उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप कर लेते, पर कुछ तो हो जाएगा, आपके पास आके नहीं तो रुक जाएगा. So, you know, the more people will start delegating power, delegating work, delegating responsibility, okay? And as well as giving ownership to their employees, at least core team. So, you know, every founder should create an inner circle for themselves. There has to be, you know, at least 5 people in your inner circle, including an advisor, maybe an incubator head, maybe somebody. Wo 5 log jin pe aap aankh band karke believe karte hain, right? Create your inner circle. That's one tip. Two, start delegating responsibility. आप खुद सब कुछ नहीं कर सकते. Third, जो आप प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार रहे हैं उनको को क्रिएट कीजिए अपनी टीम्स के साथ, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, जाइए ना एक रिट्रीट करके आइए, ऋषिकेश चले जाइए, ठीक है, नैनीताल चले जाइए, एक रिट्रीट करके आइए, ठीक है. सो यू नो अपनी टीम को भी अपॉर्चुनिटी दीजिए अपने साथ ग्रो करने की. बिकॉज आपने सही कहा वानी कि स्टार्टअप इज नॉट जस्ट अबाउट द फाउंडर, राइट, बिकॉज फिर तो हीरोज बनते हैं ना सिर्फ.
3: एग्जैक्टली
1: जहाँ एग्जैक्टली हाँ. सो यू नो स्टार्टअप तो वहाँ बनता है जहाँ टीम साथ में चलती है. सो माई सजेशन टू ऑल द स्टार्टअप फाउंडर्स इज क्रिएट योर इनर सर्कल. आपके वो 5-7 लोग जो यू नो आंख बंद करके हर समय आपके साथ खड़े हैं, और उनको फिर गिव देम अ पार्ट ऑफ योर कंपनी, गिव देम ओनरशिप, मेक देम को फाउंडर्स. एंड बिकॉज हमने हमारे अभी यू नो दो स्टार्टअप कंपनीज हैं जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत अच्छी फंड रेज किया है. तो एक स्टार्टअप ने 30 करोड़ रेज किया सन फार्मा से, एक और स्टार्टअप ने 40 करोड़ में वो कंपनी इनफैक्ट अक्वायर और हायर डील हुई है. तो सेम यू नो बैलेंस टीम, बहुत बैलेंस टीम है उनकी जो कोर टीम है, और यू नो प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है. सो एंड यू नो दे वर फुली इन्वेस्टेड इन टू वट दे वर डूइंग. सो वंस दैट हैपन्स आपकी टीम का भी आप पे कॉन्फिडेंस होगा. उनको पता है कि ऐसा नहीं कि यू नो आप खुद तो कहीं पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो और साथ में उनको काम पे लगाए हो और उनको कहा है कि स्टार्टअप है तो सैलरी कम मिलेगी. ऐसे नहीं होता, ठीक है, उनका एक फेथ होना चाहिए आप पे. तो वो फाउंडर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू यू नो परकुलेट दैट मिशन इन द टीम इटसेल्फ.
0: दैट्स अमेजिंग, दैट्स अ ग्रेट एडवाइस मैम. आई थिंक इसके साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद.

0: तो मैं वापस आपका स्वागत करती हूँ सुनो शारदा के स्टार्टअप चर्चा शो में। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारे साथ है मैम दिव्या राजपूत एंड मैम सुरभि। सुरभि मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको कैसे ये आइडिया आया स्टार्टअप का, यू नो, इन बेकरी एंड ऑल दैट? कैसे आपको ये स्टार्टअप का आइडिया आया, प्लस इनोवेशन क्या रोल प्ले करता है इन एड्रेसिंग द सोसाइटल चैलेंजेस?
1: सो आइडिया कैसे आया, इट्स लॉन्ग स्टोरी। आई जस्ट कट इट शॉर्ट। सो इट वॉज माई सन्स बर्थडे, ओके, एंड वी हैड

0: year, it is still having a lot of chemicals. So there is a lot we can do about changing our eating habit, improving them, with only sourcing it from the right place. So that's when we started working on bringing together these bakers and making it into a platform, which is beneficial on both the sides. These bakers get their business. They are women entrepreneurs. They have their own challenges as women entrepreneurs. And as a customer, I need them. And that's when we made this platform. Now, about innovation, of course, innovation is needed at every step. अगर आप वो कर रहे हो जो कोई और कर रहा है तो आप एक्चुअली उस प्रॉब्लम को ज़्यादा एक पॉइंट के बियॉन्ड सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि वो तो एक सेम ही तरीके से आप अटैक कर रहे हो ना उसको. सो इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग इन द सोसाइटी, इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर यू आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स तो वो प्रॉब्लम पूरी तरह से आप टैकल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर कोई वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है. सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम हो, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू वाटर, whether it is, I'm talking about larger picture, whether it is related to, you know, environment, innovation is needed, and innovation doesn't need to be high tech. You know, innovation can be as small as replacing a plastic with a jute bag, you know. So it's a small innovation, but it is an innovation in itself because you're breaking the barrier.
1: I've read it somewhere that, you know, serious innovation is greater than invention.
0: Right. You don't need invention.
1: We don't need
2: दिव्या मैम, माय लास्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू. आपके हिसाब से मैम, जो भी विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, जो विमेन हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर जर्नी अपनी शुरू करना चाहते हैं, आपकी तरफ से उनको क्या वो पीस ऑफ एडवाइस होगी जिससे वो जो सोसाइटल चैलेंजेस फील करते हैं वो चैलेंजेस को वो कवर अप कर पाएँ और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएँ?
3: मेरा सबसे जो आई थिंक शुरू का सजेशन होगा वो ये रहेगा कि अपना एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कीजिए, ठीक है, फॉर विमेन. विमेन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड लाइक सुरभि सेड थोड़ी देर पहले कि यू नो व्हाई जस्ट एंटरप्रेन्योर्स, हर विमेन के लिए ये ज़रूरी है. पर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज अब आप यू नो सिर्फ एक बिजनेस ओनर नहीं है, अब आप एक लीडर भी बनने जा रही हैं. सो जब आप लीडर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए आपका फैमिली सपोर्ट सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, बट अदरवाइज आपका बिजनेस सपोर्ट सिस्टम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो एक आप अपना सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कीजिए. जो मैंने बोला किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है एक आपका इनर सर्कल, ठीक है, वो लोग जो आपके लिए अवेलेबल हैं. किसी तरह का यू नो आपको किसी मीटिंग में अचानक जाना पड़ेगा, ठीक है, और वाइल मे बी यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है, आप रिमोटली काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अचानक जाना पड़ेगा तो घर में कुछ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. तो सबसे पहले आपके दिनचर्या को स्टडी कीजिए, देखिए आपको आपकी अगर आपके बिना वो चीज़ चले, चाहे फिर वो आपका घर हो चाहे आपका बिजनेस हो, आपके बिना अगर वो जगह चले तो उसके लिए कौन चाहिए? आपका रेप्लिका चाहिए या यू नो कोई लो स्किल्ड वर्कर भी चल जाएगा? तो सबसे पहले अपने रिसोर्स एलोकेशन करिए, फिर देखिए कि फंड्स कहाँ चाहिए, ठीक है. हम अक्सर अंडर फंडिंग की वजह से हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं बहुत लंबे समय तक, और फिर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरे तुम तो कितने टाइम से स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर हो. सो वो शायद यू नो बहुत ज़रूरी नहीं है करना, बट मैं ये कहूँगी कि अगर आपने प्री प्लान कर लिया तो पहले अगर हो सके तो एंटरप्रेन्योर जैसे ही आप बनने की सोचें तो 6 महीने प्लानिंग कीजिए, आपकी रिसोर्स प्लानिंग कीजिए, फंडिंग के रिलेटेड, मैन पावर के रिलेटेड. अगर आपको आपके माइनस वो जगह चल सकती है कि नहीं चल सकती है, ठीक है, वो सोचिए, एक्सपर्ट्स अरेंज कीजिए. आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका एक एडवाइजरी ग्रुप सेटअप कीजिए और एक आपका इनर सर्कल क्रिएट कीजिए. सो मेरा ये सजेशन रहेगा, 6 months ऑफ गुड प्लानिंग कैन एक्चुअली सेव ईयर्स फॉर यू. सो वो एक मेरा सजेशन रहेगा टू ऑल वेमेन एंटरप्रेन्योर्स. और फिर जब एक बार आपने रिसोर्सेस अरेंज कर लिए तो उसमें 100% कूद चाहिए आप उसको, 2 से 3 साल देखे देखिए आपको मजा आ जाएगा. सो मेरा ये बस ये सजेशन रहेगा हमारी वेमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए.
2: सुरभि मैम, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू एज अ स्टार्टअप फाउंडर, वेमेन स्टार्टअप फाउंडर, फॉर ऑल द वेमेन स्टार्टअप फाउंडर्स आउट देयर.
0: सी, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स अ टफ जर्नी, एंड जो चीज टफ नहीं है उसमें मजा क्या है? सो face it, if you have decided, it is a roller coaster ride, but maza aayega. And ultimately what you want is something that you should be clear on. Aapke dimag mein clear hona chahiye, mera ultimate aim kya hai, mera ultimate goal kya hai.

0: मुझे कितने टाइम में क्या अचीव करना है. सेट योर गोल राइट एंड लाइक दिव्या मैम सेड, कीप योर सपोर्ट सिस्टम रेडी सो दैट यू कैन जगल बिटवीन सो मेनी थिंग्स, बिकॉज जगलिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी अ फाउंडर. बी इट अ मैन और अ वुमन, यू हैव टू जगल विद सो मेनी थिंग्स, एंड वुमेन हैव टू डू इट मोर. So be ready for that juggle, be ready for the roller coaster ride. It is rewarding at the end, but you have to be patient and you have to be having your perseverance on. So wo aap jab tak patiently dheere dheere aage badhte jayenge and apna goal sahi rakhein, goal set rakhein, so there is no looking back.
1: We say that dreams which are not, you know, which don't scare you aren't big enough,
0: right?
1: So you need to get a little bit scared and then डर के आगे जीते, लाइक वी ऑल से. सो विद दिस आई विल कंक्लूड दिस स्टार्टअप चर्चा. आई विश टू थैंक दिव्या मैम एंड सुरभि मैम फॉर कमिंग हेयर एंड यू नो शेयरिंग देयर इनसाइट्स एंड थॉट्स एंड देयर जर्नी विद अस. और आई एम श्योर हमारे जो श्रोता हैं और जो भी हमारा शो देखेंगे उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, स्पेशली टू द वुमेन जो कि एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी अपनी शुरू करना चाहते हैं. उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी, वर्ड ऑफ थॉट्स होंगे एंड they can move ahead successfully. Thank you so much.
2: अभी आप सुन रहे थे विमेंस एंटरप्रेन्योर्स थीम पर आधारित ये स्टार्टअप चर्चा. इस चर्चा में शामिल थी डॉक्टर दिव्या राजपूत, द स्टार्टअप पॉलिसी एक्सपर्ट एंड इनक्यूबेशन हेड एट JSS. दूसरी हमारी गेस्ट थी डॉक्टर श्रद्धा अवस्थी, अ लीडरशिप एंड स्किल कोच. और तीसरी मेहमान रही मिस सुरभि गुलाटी गुप्ता, द इंस्पायरिंग स्टार्टअप फाउंडर ऑफ अ वुमेन्स बेकरी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म. और इस प्रोग्राम को संचालित कर रही थी, या यूं कहें कि मॉडरेटर थी, मिस वाणी कपूर शारदा लॉन्च पैड फेडरेशन से. आशा करता हूं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा. निश्चित तौर पर खासकर उन महिलाओं को जो इस क्षेत्र में आकर बहुत कुछ करना चाहती हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहती हैं. और फिर कहते हैं ना कि एक आइडिया आपकी लाइफ को बदल सकता है. तो ये परिचर्चा आपको कैसी लगी, 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं. इसके अलावा 90.8 FM पर आप हमें मेल कर सकते हैं. ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति. नमस्कार.

0: कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। म्यूजिक, देसी ट्रैप, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर सिमरन कौर टडली, टाइटल दिलबर जानी, लेट्स लिसन टू इट ओनली ऑन सोनू शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: गगन खोखरी फतेह।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: रघु हो गया चंगा, पर राघव की टीवी ना छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं, कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
4: शारदा। तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है।
5: अरे मम्मी सरकारी नौकरी लग

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: माहवारी संबंधित कुछ गलत फहमियाँ हैं या यूँ कहें कि कुछ भ्रांतियाँ हैं, आइए उनको दूर करते हैं और जानते हैं। लोगों में माहवारी को लेकर कई गलत भ्रांतियाँ और गलत फहमियाँ होती हैं, जैसे कि माहवारी गंदी और हर महीने होने वाली शर्मनाक घटना है।
2: माहवारी के समय सभी लड़कियों के लिए सभी गतिविधियों से दूर रहने का समय होता है।
1: माहवारी का समय स्कूल न जाने का समय है।
2: माहवारी एक व्यक्तिगत मुद्दा है जो केवल महिलाओं से संबंधित है।
1: याद रखें, मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक घटना है।
2: माहवारी एक नियमित होने वाली प्रक्रिया है और यदि लड़कियां इसमें सहज महसूस करती हैं, तो वे सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकती हैं।
1: जब तक तेज दर्द या गंभीर परेशानी न हो, तब तक माहवारी का समय स्कूल या अन्य गतिविधियों से छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। स्कूल में भी उनके लिए पैड बदलने के साफ और सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है।
2: बहुत से लोगों के पास उनके माहवारी प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन, उचित स्वच्छता और सहयोग नहीं होता है। भारत में लड़कियां हर महीने अपनी माहवारी की वजह से स्कूल में एक या दो दिन अनुपस्थित रहती हैं, जो कि उनकी शिक्षा और भविष्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।
1: माहवारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है, जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है। लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं, बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है, जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्व

फूड बन चुके हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा,

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सर पट भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हरदम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
2: कहीं थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
1: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
3: आओ बनाए अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: television, OTT production, animation, VFX, gaming design, public relation and advertising.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: इन समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
4: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.
8: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, पाते हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
6: ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM। सौ शर्त मंजूर, सिंगर्स पलक मुच्छल एंड मोहम्मद इरफान, म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय संजीव चतुर्वेदी, लेबल टिप्स ऑफिशियल। सो लेट्स लिसन टू इट ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जाँच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: जन्म के समय लगे कमजोर, 14 दिन बाद भी वृद्धि हो कम, छूने पर लगता हो ठंडा या फिर लगता हो गरम, जन्म के पहले दिन या 14 दिन बाद भी आंख और शरीर हो पीला या शरीर दिखता हो नीला, सांस लेने में हो परेशानी अगर दूध पीने में हो कठिनाई, सांस चलती हो तेज या धंसी लगती हो छाती, त्वचा पर हो छोटी फुंसियां 10 या फिर दिखे बड़ा फोड़ा, नवजात लगे सुस्त या बेहोश या पड़ता हो उसको दौरा, फूला हुआ लगे पेट, हो दस्त या हो रहा हो किसी अंग से रक्त स्त्राव, कटा फटा हो होंठ, चिपका हो तालू, सर में पड़ी हो गांठ, समझ लो बच्चे की है हालत खराब। इन लक्षणों का तुम लेना सारा ज्ञान, अच्छे से सब कर लो इनका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना और अपने बच्चे को तुरंत SNCU ले जाना। आपका ख्याल ही आपके परिवार को स्वस्थ रखता है, इसीलिए ना करना इन लक्षणों को नजरअंदाज, क्योंकि फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM। सुनो
1: शारदा, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
2: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख के चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ, बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम ख़राब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है।
2: काम बहुत ज़रूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
1: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
2: उनको यही सिर पर कपड़ा रखना है हर समय
1: जी।
2: दूसरा ये कि कम से कम जो है, मतलब ऐसे ही समय यदि देखें बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट।
1: और
2: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, पैर में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
1: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
2: उसमें आराम करें,
1: उसमें आराम
2: वहाँ भी जगह मिल जाए, अपना लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह का जगह है उनको वहाँ पर अपना।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना, बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
2: खास तौर से जो है आपको, एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
1: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
2: हीट स्ट्रोक हो जाता है, बुखार आ जाता है,
1: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
2: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता है, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं, औरतें हैं बच्चों को लेकर कहीं रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं, और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांस है।
1: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
2: लूज मोशन भी है,
1: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
2: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है दूध मोसी के लिए तो टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
2: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी मिलती है कोई, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ORS?
2: ORS एक जीवन रक्षक घोल है
1: जी,
2: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आप तो देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
1: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
2: तब भी उसको ले सकते हैं,
1: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
2: दिनचर्या तो यही है कि सुबह जल्दी उठें
1: जी,
2: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें, लेकिन व्यायाम सबसे पहले है ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज साधन ऐसी है जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए। जो भी अच्छे आपको जो है कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो वो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
1: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे?
2: गर्मी से बचें, थोड़ा सा तंज हो सकता है जितना हो सकता है, ये नहीं कि काम बंद कर दें। बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं। घरेलू लिक्विड जो लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें इसमें।
1: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है, तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ

0: आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए।

0: बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
1: आई पापा। क्या पापा आप जगह जगह छुपते रहते हो?
0: वो
1: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
2: क्या हुआ बेटिया?
3: डॉक्टर साहब
4: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपके ही देन है।
5: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
1: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
3: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
4: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
7: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं, तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you?
0: द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी।
6: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।